0: मगर ये घाटी पर से होकर न गुजरा। और तुम क्या समझे कि घाटी क्या है? किसी की गर्दन का छुड़ाना या भूख के दिन में खाना खिलाना किसी रिश्तेदार यतीम को या मिट्टी में पड़े किसी नादार को। फिर उन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और जो सब्र की नसीहत और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे। यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं, और जिन्होंने हमारी आयतों को न माना वही बुरे नसीब वाले हैं। ये लोग आग में बंद कर दिए जाएंगे।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ऐ अल्लाह, अपने रहम करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत और आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ऐ अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता। आमीन।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
2: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: Super

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
5: अस्सलाम वालेकुम। अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न? अदा
7: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: अरे न खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

हा जी, हा समय नए प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां अॼु अव्हां खां कोई बि सवाल कोन कयो आहे ऐं अॼु तव्हांजा बिल्कुलु नाला हलाईंदासीं। SMS ज़रिए बि, फेसबुक ज़रिए बि ऐं लाइव कॉल ज़रिए बि तव्हांजा नाला ज़रूरु हलाईंदासीं। परेशान न थिजो, तव्हांजा नाला हलाईंदासीं। ऐं हिन वक़्तु हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं। कॾहिं बि न वञिजो।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: दी फौज मिसाइल फिजा में तबाह करे छिया सऊदी तात फौज जो चमणाए तो उसी मलेशिया सऊदी शहर के निशानो बनायो समुरन मिसाइलन के फिजा में ही तबाह करे छियो सऊदी ते यमन में उसी कंट्रोल इलाकन सनान सदा इमरान गवर्नर्स माज हमला थी रहा है एतादी फौज पारा उसी मलेशिया खिलाफ जवाबी कार्रवाई जो सिलसिलो जारी है सनान सदा उदेदा में उसी बागन ते बमबारी हथियारन जो डंपो सामुंडी सुरंगों और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने की दावा पर एक खबर इदारे मौजूद ताज में इतिहादी फौज हमले में 250 वेड़ाक मार सवे जख्मी थे आए। ईरान जंग ते हर महीने 3 अरब डॉलर्स खर्च थी रहा है सदारती चूंडन में हिस्सों वठण बाबत अजा फैसलो ना है कयो तेल जो कीमतों मिट्रम चूंडन का अग तब दबाव जो सबब बनजी रही हैं जंग खत्म करण लाए ईरान के यूरेनियम जो रचाव घटाणो पवंदो ईरान एटमी हथियार न तो चाहे त के 60 सैकड़ो यूरेनियम बारण जी जरूरत छो है अमेरिकी नायब सदर जे डी मेनस है ईरान से गालू जारी रखने की तस्दीक पर दई खबरू इदारे राइट्स के इंटरव्यू डींदे जे डी वेन्स ईरान जो एटमी प्रोग्राम महदूद करण वाली सखड़ियों खातिरू काफी ना है अमेरिका ईरान का अमली कदम चाहे तो अमेरिका मुआदे लाए तैयार है पर खबर ना है ईरान में हतमी फैसला केर कर रहा है।

0: आप सुन रहे थे जीए आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003 आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
4: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट सुपर वाइट खूबसूरती का
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
8: السلام علیکم ادا.
9: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
8: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
9: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا؟
10: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرن تے دلی نہ تھی چوی.
8: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
9: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
10: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
11: 0301-399-2836.
12: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 ایم فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबुह वहाँ बुध पाया जी एफ एम 88 के नेटवर्क त अवं के बुधाई तो हलां तड़ा नंढा बाड़ा गुलाब जहा गुल हूँ जी अस आईंद जहा अबा आईंद जहा मामार वक्त जहा बादशाह अस उन हिफाजत भी क्यों तालीम के तरफ भी असो तवज्जो दूँ त ॿारनि जी जेका नशोनुमा आहे उन जी खाद खुराक आहे उन्हनि जी परवरिश आहे उन्हनि जो लटो कपिड़ो आहे असां हुन ते तवजो ॾींदासीं त हुननि जो ज़हन दिमाग़ उहो बहितर थींदो पर असांजा उहे ॿार अफ़सोस सां चवणो पए थो जंहिंजी उमिरि तालीम जी आहे उहे अॼु असांजा होटलनि ते पंहिंजो बहिरा आहिनि चांहि खपाईंदे ॾिसूं था ऐं हॉस्पिटलनि में बिस्किट केक खपाईंदे ॾिसूं पिया लटड़ा मेरा ऐं हुन जा हाल ख़राबु अफ़सोस उन्हनि वालदेन ते जेके पंहिंजी महिनत करण जे बजाए नंढड़नि ॿारनि खे गुलाब जे गुल जहिड़नि ॿारनि खे किनि ग्रेजुनि में असां ॾिसूं पिया त जिते हुन खे जेके मिस्त्री आहिनि मैकेनिक आहिनि उहनि खे पाना पकड़ियूं बि वहाए कढनि पिया कोशिशि कयो त उहे जेके मिस्त्री आहिनि असांजा उहे मैकेनिक आहिनि उहे जेके असांजा जेके असां उस्ताद बि चवंदा आहियूं त इहे नंढड़ा ॿार जेके महिनत कनि था उन जा उहे बच्चा आहिनि उन जा उहे औलाद वांगुरु आहिनि त उन्हनि खे ईअं ई ॾिसणु खपे जीअं औलाद खे ॾिसबो आहे जीअं पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि जी नशोनुमा कबी आहे उनजी परवरिश कबी आहे खाधे पीते जी लटनि कपिड़नि जी त जेकॾहिं को होटल ते बहिरागिरी करे थो टोकन वठी करे चांहि पहुचाए थो ऐं कहिड़े बि क़िस्म जी नंढड़ो ॿारड़ो महिनत करे थो जंहिं वटि कमु करे थो मज़दूरी करे थो कंहिं बि ऑफिस में हिकिड़ो ऑफिस बॉय आहे त असां उन सां अहिड़ो सलूक कयूं जीअं असांजी पंहिंजी औलाद हूंदी आहे अहिड़े हिसाब सां असां उन्हनि जी जेका परवरिश कंदासीं असां उनजो ख़्यालु कंदासीं असां उन्हनि जी शफ़क़त जो हथु रखंदासीं त असांजा उहे ॿार आईंदा जा अबा आहिनि जंहिंजी तालीम ॾींदासीं जंहिंजी खाद खुराक कंदासीं हर लेवल जी असां उन्हनि ॿारनि जी ख़िदमत कंदासीं पर स्टार्टिंग खां ॿारनि खे जेके असांजे मुल्क पाकिस्तान में पोलियो जा फुड़ा पीआरिया वञनि था ऐं बीमारनि खां बचाव जा टुका लॻाया वञनि था त असां उन्हनि ते बि तवजो ॾींदासीं त असांजा ॿार कंहिं मूज़ी मर्ज़ खां बची सघंदा कंहिं बीमारीअ खां बची सघंदा त असांजी हर लेवल ते हर क़िस्म जी हर नमूने जी असांजी पंहिंजी कोशिशि करणु खपे त असांजा ॿार उहा ई ॻाल्हि त आईंदा जा अबा आहिनि असांजे पाकिस्तान जा मामार आहिनि पाकिस्तान जा वक़्त जा हुकुमरान थी सघनि था उनजी एतिरी ज़हन जी असां कुशादगी कयूं जीअं असांजी जेको आहे सो उहे ॿार असां अॼु आहियूं असां सुभाणे न हूंदासीं इहे ॿार हूंदा ऐं मुल्क हूंदो पाकिस्तान ज़िंदाबाद हूंदो।

साईं मुंहिंजा ज़बान मां मिठा ऐं वणंदड़ ॿोल ॿोलणु, सुहिणा ऐं संजीदा सुखन कढणु, नरम ऐं साईंदड़ ॻाल्हि ॻाल्हाईंदड़ खे ई मिठी ज़बान चइबो आहे। जंहिं ज़बान मां मिठा ॿोल निकिरंदा आहिनि तंहिंमें जादूअ खां बि वधीक असरु हूंदो आहे। अहिड़ी ज़बान मुरलीअ जे मंडर खां वधीक हूंदी आहे। मिठड़ी ज़बान सां बिरह वारियूं बातियूं करे इंसाननि जूं दिलियूं फतह करे सघिबियूं आहिनि। उहा ई मिठी ज़बान जॾहिं ॻाल्हाईंदी आहे तॾहिं ॼण प्यासी दिलनि में ऐं ज़िननि ते मुहबत जा मींहं वसण लॻंदा आहिनि ऐं कुर्ब ककर बणजी सूरनि जे सिज खां खे लिकाए छॾींदा आहिनि। उन ई ज़बान में अहिड़ी ताक़त आहे जो दुश्मन बि दोस्त बणजी वञनि था। उन्हनि मिठनि गुफ़्तगुनि जो मुल क़ीमती मोतियुनि खां बि महांगो आहे, पर जेकॾहिं पिरी प्यारो कावड़जी वञे त पोइ वेस बि कारा थी वेंदा आहिनि।

अजिहा सभिनि प्रोग्राम रोशन सुबुह महमूद पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां असांजे स्टूडियो घड़ियल में सुबुह जा लह लॻी 30 मिंट थियण वारा आहिनि ऐं असां निकलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो।

0: ਪੁਰਾਣ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਹਾਲਾਣੀ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਪੂ ਅ ਨੇਮ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਸਟਿਡ
1: ਸਰੀਆ ਗਾਰਡਰ ਟੀਅਰ ਏਂਗਲ ਚੈਨਲ ਪੱਟੀ ਲੋਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾ ਚੌਂਕ ਸੀਮੇਂਟ ਰੇਤੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਐਂ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਦਸਤਿਆਬ ਆਹੀਂ
0: ਹਾਣੇ ਅਚੋ ਮਹਿਰਾਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਦ ਬਲੋਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਾਲਾਣੀ
1: ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਗਲ 03003204372 ਐਂ 02424601000
2: उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
4: खुश्क और बेरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावर जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे ऐ चावर जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट अनुसंगरोगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो दीवा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8051
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

पर वॾी खुबी हर दफ़े किरी वरी उथण में आहे, ऐं किरी वरी उथण में कामयाबी जो राज़ आहे। मुश्किलातुनि जा सां मुक़ाबिलो करण जो नालो ई जियापो आहे, ऐं उन ते ज़ाब्तो रखणु कामयाबी आहे। जफ़ाकशीअ जे समुंड में कामयाबी ऐं कामरानी जा मोती भरियल आहिनि। कॾहिं बि नाकामीअ ते घबराइण न घुरिजे, छो त नाकामी कामयाबी जी ॾाकण जो पहिरियों ॾाको आहे, पर उन शर्त सां त पाण ते भरोसो ऐं इतमाद हुजे। भरोसो सभ खां वॾी ताक़त आहे, ऐं इतमाद ई कामयाबु करे थो। शिकस्त न खाइण वारो इरादो, परेशान न थियण वारो ख़्यालु ऐं ख़तमु न थियण वारी जिदोजहद बि कामयाबी जी ज़मानत आहे, ऐं जंहिं लाइ हर हाल में हर तरह हर पासे खां ऐं ॾुख सुख में हमेशह बुर्दबार रहण ते अकुलमंद जो कमु आहे। त साईं मुंहिंजा कोशिश माण्हू चवंदा आहिनि त कामयाबी जी कुंजी आहे कॾहिं बि किरणु नाकामी नाहे, माण्हू कोशिशि कंदो रहे। हिमत हे मर्दा, मदद खुदा।

जी असीं जा प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन जो साथ ऐं अवां जा नाला अवां ताईं पहुचाईंदासीं। असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया मोहम्मद खान कुंभार, मोहम्मद अमीन मरी हाले पुटा स्टाप मीरपुर ख़ास खां, ऐं हाजी सोरा बली मंगरियो ॻोठु सचे ॾिणो मंगरियो लॻे बकापुर खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं सतराम सेंगलाणी मिठी थरपारकर खां, ऐं इरम पावर मीरपुर ख़ास खां, मीरपुर ख़ास खां यासमीन मलक, ख़ालिक लाशारी, अज़ीज़ जरवार ऐं अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ास खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। आसिफ अली चाचड़ लाड़ेकाणे खां प्रोग्राम ॿुधे पियो, भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं लाड़ेकाणे खां दुआ बि प्रोग्राम ॿुधे पई। रुस्तम अली पावर ॻोठु पुनू पावर सेवण खां, कुर्बान अली ख़ासि केली, इनायत अली ख़ासि केली झंडोमरी खां, चवन कुमार कोल्ही कुनरी खां, हाफिज़ सांवल ढिलू, हाफिज़ लखमीर ढिलू मोरे खां, हाफिज़ मोहम्मद हनीफ रिंद जेकाबाद खां, उन सां गॾु आहे सदाम हुसैन रिंद, ॻोठ मसूहब खां ज़मीर हुसैन मीराणी, फिदा हुसैन, तारिक हुसैन मीराणी, नवंदरो चौक लाड़काणे खां शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो रहमान जागीराणी, हाफिज़ नईम लाइकाज़ी, हाफिज़ अमीन लाइकाज़ी पनियाकिल खां, ॻोठ सोनो खान लाशारी खां मीरपुर ख़ासि खां इक़बाल लाशारी, नज़ीर अहमद खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां, तालिब मरी ॻोठु लाल मोहम्मद मरी खां, ऐं असांजा दोस्त जी एफ एम 88 जे नेटवर्क जा दोस्त असांजे लाड़काणे जा साथी आहिनि, आमिर अली जागीराणी, मोहसिन अली बुलेदी ऐं अब्दुला चन्ना, ॻोठु तैयब थेबो खां हबीबुला थेबो, ऐं ॻोठु मोलिरणी माशी लॻे बकापुर खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, वफ़ा हुसैन ऐं मुख़्तार अली सोलंगी, ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठु मोहम्मद क़ासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो ऐं फ़ौजी इरशाद अली मैसर। त सामिन प्रोग्राम जे आख़िरि में सभिनी दोस्तनि जे नाम कयूं पिया फ़ाइज़ अली जो ख़ूबसूरत नगमो गॾिजी पिया ॿुधूं।

जी हाँ जी, असमें प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पांजे पुजाणी ते वरी हयाती रही तो इंशाल्लाह ईंदड़ प्रोग्राम में अवां सां मुलाकात जरूर थींदी। तेसी ताईं पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणी जो खरींदा इजाज़त अलह निकाहबान।

ते हर महीने 3 अरब डॉलर्स खर्च थी रहा है। सदारती चूंडन ने सो वठण बाबत अञा फैसलो नाहे कयो। तेल जी कीमतूं मिटरम ते चूंडन खां अग दबाव जो सबब बणजी रहियूं आहिनि। जंग खतम करण लाइ ईरान खे यूरेनियम जो रचाओ घटाइणो पवंदो। ईरान एटमी हथियार नथो चाहे त खे 60% यूरेनियम ॿारण जी ज़रूरत छो आहे। अमेरिकी नायब सदर ईरान सां ॻाल्हियूं जारी रखण जी तस्दीक करे छॾी। परॾेही ख़बरू इदारे राइट्स खे इंटरव्यू ॾींदे जेडी वेरस चयो आहे त ईरान जूं एटमी प्रोग्राम महदूद करण वारी सखियूं ख़तरियूं काफ़ी न आहिनि। अमेरिका ईरान सां अमली क़दम चाहे थो। अमेरिका मुआदे लाइ तयारु आहे पर ख़बर न आहे ईरान में हतमी फ़ैसला केरु करे रहियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम सूरज जल्द, कम वक्त बेहतरीन गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म करें रोशनी एंड लेजर।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03005569।
9: अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
10: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
10: न? अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
10: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
10: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
11: 03013992836।
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195 1557724।
12: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
11: ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے فرمان سے سر سیرل ریڈکلف نے دو لکیریں کھینچی اور صرف چار ہفتوں میں اپنی

0: मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
3: सुपर वाइट।

0: शाहद से फतह करते हैं लोगों के दिलों को,
1: शाहद से फतह करते हैं
0: लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर ट्यूनिंग इन टू रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आर जी रुखसार, सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी डे और 11 से लेके 1 बजे तक आपका और मेरा साथ होता है। तो ये साथ आज भी रहेगा पूरे पूरे 1 बजे तक प्रोग्राम में। अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 16 मिनट, पाकिस्तान का म्यारी वक्त है। तमाम इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइव में, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, बाइक पे हैं, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल किए।

हैं, बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे और प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा GFM88 के नाम से, जो कि फेसबुक के ऊपर आपको मिलेगा. और जी आप उसके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट आपको मिलेगी जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करेंगे. और नेक्स्ट सॉन्ग जो कि बहुत अच्छा होगा, इसको हम प्ले करेंगे रिमिक्स वर्जन में. और इसी के साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानेब भी जाएंगे. तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा

स्पेशल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार।

0: रेडियंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधी का आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेल आसिम हुसैन आराई 030720
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो टॉमी जो

0: जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं ख़ूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं ख़ूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खु़शख़बरी पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
2: न अदा
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी प्रोग्राम में तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे अब कॉल भी कर सकते हैं. हमारा सेगमेंट होगा जैसे सुर लगाओ गाना सुनाओ, और सुर लगाओ गाना सुनाओ में हम आप लोगों से सुनेंगे एक अदद गाना. तो गाना सुनाने के लिए और कॉल पे आने के लिए आप लोगों को कॉल मिलानी होगी. तो कॉल कीजिएगा 03000113488 के ऊपर. इसके ऊपर कॉल करेंगे तो आप कॉल लगा पाएंगे, कॉल मिला पाएंगे और मुझसे बात कर पाएंगे और एक अच्छा सा गाना सुना पाएंगे. और इसके साथ साथ जी जो डेली बेसिस पे कॉल करते हैं तो डेली डेली सैमसंग कॉलर्स आर नॉट अलाउड. इस बात का खास ख्याल रखते हुए आप लोगों ने कॉल करनी है. और साथ साथ आप लोग मुझे 8881 पे भी मैसेजेस कर सकते हैं. आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं हमारे पेज के ऊपर. आपको पोस्ट

0: जिंदगी गुलजार है कि इसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं. हाफिज लकमीर, आपकी कल कॉल लगी थी लेकिन आज लगा ली है दोबारा, तो मुझे गाना सुना दें जल्दी से और फिर अगले दो दिन तक कॉल नहीं लगानी, ठीक है. सॉरी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, प्लीज सही से बात करें, मतलब सही जगह पे जाके बात करें. जी काफी डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, मुझे बताएं कि गाना कौन सा सुनाएंगे.
1: ये गाना सुनाऊंगा वो प्ले करना.
0: ओके सुनाए.
1: जी महबूब तो दिस मुखदर मोजो आखिर भी न थे बदनाम बुझा. महबूब तो दिस मुखदर मोजो आखिर भी न थे बदनाम बुझा. जी ये गाना है.
0: ओके किसी को डेडिकेशन.
1: हाफिज साहब, ढिलू साहब, शहर ढिलू साहब, मोहम्मद कासिम ढिलू साहब और सर दर्द साहिबा और मुस्कान साहिबा और जो भी सुन रहे हैं सबको सलाम.
0: ओके जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी. और ये थे कॉलर 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे. Okay, next caller. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Okay, ji. Hello, assalamu alaikum.
2: Salam.
0: Ji, kaun baat kar rahe hain, kahan se?
2: Rajasthan, Hafiz Khan, Moro.
0: Hafiz Khan, bhai, kaise hain, thik thak?
2: Alhamdulillah, do.
0: Program sun rahe hain?
2: Ye program sun raha.
0: Okay, gaana sunayenge.
2: Ye gaana sunaunga.
0: रोने धोने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है.
2: नहीं नहीं
0: सुना दे.
2: मशरत आया.
0: ओके किसी को डेडिकेशन है. थैंक यू सो मच. और भाई का गाना हम प्ले करेंगे.

ओके जी, गाना हम प्ले करेंगे, गाना सुनते सुनते हम मजीद और बहुत सारे लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे. सो हियर कम्स अ सॉन्ग जो कि हमें भाई ने सुना दिया है, सुनते और आगे चलते हैं.

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ओके, प्रोग्राम सुन रहे
1: हैं? जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है।
0: पहली दफा कॉल की है
1: जी, काफी दिनों से बात की है, लेकिन पहले आपसे बात हुई थी प्रोग्राम में।
0: ओके
1: जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं, सरकार चल रहा है।
0: ओके, मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
1: हाँ जी, गाना आपको सुनाते हैं। ये गाना है कि संभाले कर को जानो यो अजब,
0: सॉरी
1: ये फोन आपको बताएगा
0: कौन सा गाना है ये?
1: ये है संभाले खान रिको जानी बताली देर प्यारा।
0: और गाना किस सिंगर का है
1: जी?
0: किस सिंगर का गाना है ये?
1: ये
0: सॉरी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है।
1: मैंने कहा नाम मुझे नहीं पता।
0: चले मैं सर्च करती हूँ उसे। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जो भी दोस्तों ने ये सॉन्ग जरूर चलाना।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे। हम प्ले कर रहे हैं एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करें, और उसके साथ हम आगे चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ एक और कॉलर लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
1: आप बताइए कैसे?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताओ कि प्रोग्राम सुन रही हो? ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है। अच्छा, मुझे बताओ कि गाना सुनाना है?
1: जी सुनाए।
0: तो सुना दे, अच्छा सा, रोने धोने वाला बिल्कुल नहीं।

0: लेकिन ये तो बॉलीवुड कंटेंट है, ये कैसे प्ले करूं मैं?
1: अरे मुझे पता नहीं चला कि सर।
0: चलो मैं अपनी तरफ से कोई प्ले कर दूं अच्छा सा।
1: हाँ प्ले कर दो, मुझे डेडिकेट।
0: चले मैं प्ले कर देती हूँ। किसको डेडिकेट करेंगी?
1: मुझे
0: मुझे।
1: मुझे डेडिकेट
0: अच्छा आपको कर दूं? चले मैं आपको कर दे।
1: अच्छा दूसरा वाला सेगमेंट से रखिए ना।
0: जी
1: कंटेस्टर
0: वाला सेगमेंट आज करेंगे हम। और क्या करेंगे? हाँ आज करेंगे हम हरा भरा पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सरदर्द, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू। ओके जी, इस वक्त हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नजीर धारी जो, वहीद भाइयो, शमन भाइयो, मुमताज भाइयो और दिलशाद भाइयो हमें सुन रहे हैं। आप तमाम लोगों को हम खुश आमदी कह रहे हैं जी प्रोग्राम में। आप हमें सुन रहे हैं इतने गौर से, इतने शौक से। नजीर धारी जो, वहीद भाइयो, शमन भाइयो, मुमताज भाइयो और दिलशाद भाइयो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो।

Okay, जी और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं और इसके साथ साथ जी मुझे जो स्पेशल डेडिकेशन आई है असल में उन्होंने करनी है रिकॉर्डिंग सो हम एक बार उनका फिर से नाम ले लेंगे जी. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नजीर धारी जो वहीद भयो शमन भयो मुमताज भयो और दिलशाद भयो इस वक्त हमें सुन रहे हैं. आप तमाम लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में कि आप इतना शौक से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं जी. थैंक यू सो मच नजीर धारी जो वहीद भयो शमन भयो मुमताज भयो और दिलशाद भयो. आपके लिए हम एक अच्छा सा गाना भी प्ले करेंगे मुशर्रफ फतेह अली खान की आवाज में. ठीक है जी और ये हम मेरे ख्याल से प्ले भी कर देते हैं और प्ले करके हम जाएंगे न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों की तरफ. दोनों के बाद वापस आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना मेरा साथ देना है. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: सां पीटीआई सां ॻाल्हियूं कयूं छा मुआशी फीत थिए खे ॿीहर रोकणु मुल्क दुश्मनी न आहे पीटीआई वारा होश खां कमु वठनि लॉन्ग मार्च ख़तमु कनि त ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं

सदर आसिफ ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी मुलाकात, पीटीआई जी लॉन्ग मार्च सबब पैदा थियल सूरतहाल समेत मुल्क जी मजमूई सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं, कंहिं बि आइनी ऐं कानूनी क़दम खां पहिरियां मुशावरत जो अमल जारी रखण ते इतफ़ाक़। ज़रियुनि मूजिबि सदर ऐं वज़ीर आज़म में मुलाकात, गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल खे आला तरीन सिविल एवार्ड ॾियण वारी तक़रीब खां पोइ मुलाकात थी, जंहिंमें पीटीआई सां ॻाल्हियूं कंदड़ कमेटी मेंबरनि ब्रीफिंग ॾिनी।

0: अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई अपोजिशन टीम के गालन वाली हुकूमती आछ जो मुस्बत जवाब देने की हिदायत कर छी बानी से मुलाकात गालन की बहाली लाए पेरों शर्त करार बैरिस्टर गौर चयो तो असो को भी मुतालबो गैर आइनी न हो गालन के भी लॉन्ग मार्च से मशहूर न कर वे चैन टुटन ही न घुर्ज वेहण से ही हल निकर असद कैसर चयो तो संगीन खदशन बावजूद हुकूमत से गालन लाए तैयार आयु पाकिस्तान खातिर सियासी जमायतन के गाल करनी पवंद
1: रियासत बिल्कुल माँ होती है लेकिन रियासत को बाप का रोल ही करना पड़ता है बिगड़े बिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेल रहे हैं जो उसको नुकसान पहुँचा रहे हो माँ को तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे और इस रोल को पहले भी किया कहाँ होती है जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक काम रही होती थी सारा निज़ाम रुका होता था कहाँ है आज रियासत का फैसला है और उस फैसले के बाद है कोई ये रियासत का फैसला है वो TLP हो वो PTI हो वो कोई और जमात हो नो नॉनसेंस
0: रियासत बिल्कुल माओ है कदें कदें रियासत के पी जो किरदार पैदा करो पवन है मुल्कती वजीर तलाल चौधरी चो है तो बुधायो किथे है TLP जका हलंदी हुई तो समूरो निज़ाम रुकजी वो हो रियासत जो फैसलो है तो TLP हो या का भी जमात कंके भी बेवकूफी कर नी वी KP बाबत आइनी मामलों से मुशावरत थी रही है पंजाब हुकूमत भी सूबे में कलम 144 लागू कर छो जलसन जलूसन से पाबंदी
2: इमरजेंसी के बगैर लगाए बगैर मामला हल हों लेकिन अगर टेररिज्म जो दहशत गर्दी जिस तरीके से इस मुल्क में है उसको कंट्रोल करने के लिए आईनी जो भी तरीके का हुआ उसको फिर अख्तियार करना पड़ेगा
0: दहशतगर्दी के कंट्रोल करने लाइ को हल है तो थियण घुर्ज इमरजेंसी लगन बिना मसला हल थी सन था तो थियण घुर्जन पान सैदाबाद में मीडिया से गाले वे वजीर तो बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत अपोजिशन विच में गालन की कामयाबी लाइ वी कोशिश कई हुकूमत अपोजिशन विच में गाल नाकाम छो थ सभी के खबर है पीपुल्स पार्टी जमहूरी जमात है गालन से यकीन रखे थी
3: हम सब आवाम को जवाब दे पब्लिक को सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या उनके मुंतखब नुमाइंदे अपना एक एक मिनट उनके लिए वक्फ कर रहे हैं या नेगेटिव सियासत पे वक्फ कर रहे हैं एक चीज जरूर देखें एक तरफ मुंतखब नुमाइंदा है वो एक एक माह से दफ्तर नहीं जा रहा और एक मीटिंग नहीं कर रहा और एक तरफ वो शख्स है जो एक घंटे की भी गैप नहीं डाल रहा और आपके लिए काम कर रहा है मैं जरूर पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को जरूर कंसीडर करें कि जिनको आप इलेक्ट करते हैं वो अपना टाइम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं थैंक यू
0: असा सब अवाम आदो जवाबदार आयु अवाम के दिसन घुर्ज तो चूंडियल नुमाइंदा उन कम कर रहा है या नाकारी सियासत कर रहा है फाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी चो तवाम दिसे तो एक तरफ चूंडियल नुमाइंदो है जो एक महीनों ऑफिस न तो वे नए को इजलास कर रो है बे तरफ अड़ो शख्स है जो डी रात कम कर रो है अवाम के दरख्वास्त कस तो जरूर दिसन संदन चूंडियल नुमाइंदा किथे वक्त विञाए रहा है
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
6: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
7: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की। ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
8: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
8: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
7: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
9: सुपर वाइट।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, महरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा, छो परेशान आई?
3: अदा, नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा, दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा, जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आकर मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं. हमारा सेगमेंट है हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसमें आज हम मौजूद हैं एक और सेगमेंट के साथ और एक और नए गेस्ट के साथ. तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि हमारे साथ ऑनियर होंगे अब से कुछ देर बाद, जो कि हैं मिस्टर अब्दुल रऊफ. मिस्टर अब्दुल रऊफ जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद होंगे और इनका तारुफ मैं आपसे करवाती जाऊं. मिस्टर अब्दुल रऊफ जो कि PhD स्कॉलर हैं, कॉलेज ऑफ प्लांट साइंस हुआजोंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वुहान चाइना से इनका ताल्लुक है जी, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. इनको कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इस खूबसूरत अंदाज में मेरा तारुफ करवाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं.
0: ओके जी, मिस्टर अब्दुल रऊफ, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ हमारे सेगमेंट में इस वक्त मौजूद हैं.
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस ये मौका दिया. अगेन आपका शुक्रगुजार हूं.
0: ओके जी, मिस्टर अब्दुल रऊफ, हमें बताइएगा इस मतलब कि स्पेशल टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक पौधा एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान. तो आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी कि एक पौधा एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान, इस उन्वान के पीछे असल सोच क्या है? क्या एक छोटा सा पौधा वाकई एक बड़ी माहौलियाती सोच की शुरुआत बन सकता है?
1: बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ कि एक पौधा अकेला क्लाइमेट चेंज तो मतलब कि उसको प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाता, मगर एक पौधा इंसान को इन्वायरमेंट समझने के लिए पहला प्रैक्टिकल मौका जरूर देता है. जैसे हम हॉर्टिकल्चर में कहते हैं कि जो प्लांट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, एक लिविंग सिस्टम है. अगर आपको वो जाहिर सी बात है सनलाइट यूज करता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी एटमॉस्फेयर में वो रिलीज करता है, उसे बारिशें होती हैं तो शेड क्रिएट करता है, तो आसपास के जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है, तो वो आपकी एक सोच को डेवलप करने में बहुत किरदार अदा करता है. और अगर एक छोटी सी सोच हर इंसान के अंदर आ जाए तो वो मिलकर पूरे इन्वायरमेंट को आखिर में चेंज कर सकता है.
0: ओके जी, तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम और माहौल बहुत मुख्तलिफ है. आम आदमी अपने घर छत और बालकनी या गली या दुकान से माहौल के लिए क्या अमली शुरुआत कर सकता है पौधों को लेकर?
1: बिल्कुल, मैं आमतौर पर यही कहता हूँ कि पहला काम प्लांट खरीदना नहीं है, बल्कि आपको उस जगह को समझना या पढ़ने की कोशिश करना है कि जहाँ पे आपने ये सब काम करना है. देखिए, हम देखते हैं कि धूप कितने घंटे आती है, हवा का रुख क्या है, गर्मी कहाँ ज्यादा कलेक्ट होती है, पानी की अवेलेबिलिटी उसमें क्या है, फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो फिर उस जगह के मुताबिक हम प्लांट को चूज करते हैं. छोटी बालकनी है तो कंटेनर या पॉट्स में हम जो है धूप वाली जगह पर सूटेबल प्लांट्स को रख सकते हैं. क्लाइंबर जैसे हम बेलें जिनको कहते हैं वो हम लगा सकते हैं छोटे बड़े कंटेनर्स में. तो पानी बचाने के कभी भी मुमकिन तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपनी बैल्कनी यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारी बैल्कनी को भी पानी के सीपेज की वजह से नुकसान हो सकता है. तो हम देखते हैं कि हमने कितना पानी और किस वक्त पानी प्लांट्स को देना है ताकि उनकी जरूरियात भी पूरी हो और हमारा जो मकसद है एक इन्वायरमेंट को बेटर करने का वो भी हमारा पूरा हो जाए.
0: बिल्कुल जी. अच्छा, हमें ये भी आप बताइएगा कि साथ साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है और पौधे साया और सब्जा हमारे आसपास के छोटे माहौल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं?
1: जी, माइक्रो क्लाइमेट सादा अल्फाज में मैं आपको एक बता सकता हूँ कि एक छोटी छोटी सी जगह पर आपका मौसम कैसा है, इसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं. टेक्निकली तौर पर हम टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी, हवा और सनलाइट या रेडिएंट हीट को भी देखते हैं कि उस एरिया में या उस छोटी सी जगह में कितना इन चीजों का असर है. अगर आप एक कंक्रीट की दीवार के पास धूप में अगर खड़े हों और फिर घने दरख्त के नीचे अगर आप चले जाएं तो आपको दोनों जगह पर वेदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा. तो ड्रायर दो इम्पोर्टेंट काम करता है, पहला शेड फिर उस जिससे सरफेस डायरेक्ट सनलाइट से बचाती हैं, और दूसरा जो है ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन का मतलब है लीव्स के थ्रू जो है वो हमारा लीव्स के थ्रू पानी जो है वो इन्वायरमेंट में जाता है, तो वो एक पूरा माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है जिससे ना सिर्फ गर्मी कम होती है और जो है माहौल बहुत हमें कंफर्टेबल महसूस होता है।
0: अच्छा आप हमें बताइए, क्या हर इलाके में एक ही किस्म का पौधा लगाना सही है?
1: नहीं, हॉर्टिकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि राइट प्लांट राइट प्लेस। पाकिस्तान में कोस्टल एरियाज हैं, एरिड एरियाज हैं, यानी हमारे पास मैदानी एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इसके अलावा सब ट्रॉपिकल है, फिर हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज में जाहिर सी बात है स्नोफॉल वगैरह होती है, तो हमारे पास बहुत अच्छा जो है ना इन्वायरमेंट है, हर तरह का इन्वायरमेंट है। हम प्लांट सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट ये बात मैं कह रहा हूँ, उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस देखते हैं कि अगर वो हम मुल्तान में लगा रहे हैं या कराची में लगा रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, या सिंध में लगा रहे हैं तो पानी और टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, सनलाइट देखते हैं, फिर सॉइल टाइप क्या है, हमारी मिट्टी की किस्म क्या है। फिर जाहिर सी बात है हम यहाँ पर बात क्रॉप्स की नहीं कर रहे, तो जो शेडी प्लांट्स हैं या जो माहौल को खूबसूरत बनाने वाले प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम अपना इलाका भी देखते हैं कि उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, तो उसमें कौन सा प्रॉपर प्लांट हमें लगाना चाहिए। कि एक ट्री लगाते वक्त हम ये भी हमें सोचना होता है कि 10 साल के बाद उसकी कैनोपी यानी उसका जो एरिया है पत्तों का और रूट्स कहाँ होंगी, क्या जो हमारे पास ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं रूट्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए, पानी रेगुलर उसको कितना मिल सकता है। तो अच्छी हॉर्टिकल्चर वो नहीं है जो प्लांटिंग के दिन अच्छी नजर आए, अच्छी हॉर्टिकल्चर वो होती है जो 10 साल बाद भी सही जगह पर हेल्दी खड़ी हो और हमें वो फायदा दे रही हो प्लांट्स, मेरा कहने का यही मकसद है।
0: अच्छा साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि पाकिस्तान में जब हम पौधे का इंतखाब कर रहे हो लगाने के लिए, तो उसका इंतखाब करते वक्त मकामी आबो हवा, पानी की दस्तियाबी और जगह को कितनी अहमियत देनी चाहिए?
1: बिल्कुल, ये तो सबसे अहम चीज है। अब जाहिर सी बात है एक पौधा जो है, सादा मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं अपने लिसनर्स को, कि अगर हम एक सेब का पौधा जो कि पहाड़ी इलाकों में ग्रो होता है वो मैं अगर मुल्तान या कराची या सिंध के कुछ इलाकों में या बलूचिस्तान में खुश्क एरियाज में लगाऊंगा तो वो नहीं ग्रो करेगा। तो एक प्लांट को सिलेक्ट करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वो प्लांट हम खूबसूरती के लिए भी चाहिए, शेड के लिए भी चाहिए, या फ्रूट के लिए लगा रहे हैं तो कौन सा उसका इन्वायरमेंट बेटर है ताकि वो हमारे पास सस्टेन कर सके। तो उससे हम जो है सिलेक्शन फिर करते हैं कि वो हमारा शेड का पर्पज है, खूबसूरती का पर्पज है, और क्या वो हमारा फ्रूटिंग का पर्पज है, वो हमारा पर्पज क्या है, गली में लगाना है, घर में लगाना है, कहाँ पे लगाना है। तो जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें सॉइल देखनी होती है, टेम्परेचर देखना होता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम देखना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी रूट्स जो है जड़े वो जमीन में जाएंगे तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम उसको इफेक्ट ना पड़े उसकी रूट्स की वजह से। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि वो हमारी हॉर्टिकल्चर में कहते हैं कि वो हार्डी प्लांट है या सॉफ्ट प्लांट है, सकुलेंट है, इससे मुराद ये है कि वो हार्डी प्लांट से मुराद ये कि वो सख्त इन्वायरमेंट में, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, फिर फ्लडिंग वगैरह भी बहुत होने लग गई है, अचानक बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो सब देखते हैं कि अगर वो हार्डी प्लांट है वो सस्टेन कर सकता है, और हमने ऐसे पौधों को सिलेक्ट करना है। अगर मैं बिल्कुल एक सकुलेंट प्लांट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जो कि किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर उसका फायदा भी हमें उल्टा नुकसान है कि हमारे पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और हमारा जो है वक्त भी ज़ाया हो रहा है, रिसोर्सेज खराब हो रही
0: है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे एक या दो पौधे लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो आप इस सोच को किस तरीके से देखते हैं और छोटी शुरुआत की असल अहमियत क्या है, ये जरा हमारे सुनने वालों को बताइएगा।
1: जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे एक या दो मतलब के प्लांट्स लगाने से के क्या फर्क पड़ सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जनरल सवाल है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि दो पॉट से पूरे शहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा या उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन हम जो है हॉर्टिकल्चर में देखते हैं कि लोकेशन हमारे पास बहुत मैटर करती है। अगर वही दो प्लांट्स किसी कमरे के डार्क कॉर्नर में रखें तो एनवायरनमेंट इफेक्ट लिमिटेड होगा, लेकिन अगर वही सूटेबल लार्ज सोलियरियन बड़े पत्तों वाले पौधे, जैसे हमारे पास रबर प्लांट्स हैं जो डेकोरेशन इनडोर प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, वो हम ऐसी जगह पर बैल्कनी में रख लें या विंडो के आसपास रख लें, तो और इसके अलावा जो है बैल्कनी में अगर बड़ा कंटेनर रख के, कोई बड़ा जो है वो प्लास्टिक का कोई ड्रम टाइप चीज रख के, आजकल तो बैग भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे, उनमें जो है अगर हम एक क्लाइंबर यानी एक बेल लगा लें, तो वो ना सिर्फ हमारे जो है घर को खूबसूरत बनाएगी बल्कि वो अंदर के इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को कम बहुत इफेक्ट करती है, बहुत कम करती है। अक्सर आपने पोस्ट भी देखी होगी डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे कि लोगों ने शेयर किया होती है कि चलते रोड पे या बहुत जहाँ पे खुशहाली है या रोड है या गली है जहाँ पे बिल्कुल कोई दरख्त नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है जबकि एक दरख्त के नीचे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वही क्लाइंबर जो है वो हमारे रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा बना देती है। इसी तरह जो है और प्लांट्स हैं वो ना सिर्फ हमें जो है शेड दे रहे हैं या खूबसूरती दे रहे हैं बल्कि वो हमारे अंदर का जो इंसान है उसको भी खुश रखते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
0: ओके जी, अच्छा अगर किसी के पास लॉन ना हो या कोई ऐसी बड़ी जगह ना हो जहाँ पे पौधे लगाए जा सकते हों, तो क्या इंडोर पौधे लगाए जा सकते हैं जैसे बालकनी में लगा लिए, छोटे गमले छत पर पौधे या दुकान के बाहर, तो इस चीज़ को ज़रा सा बताइएगा कि किस तरीके से हम इंडोर प्लांटिंग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन हर जगह का जैसे आपने मुख्तलिफ जगह का बताया तो हर जगह का पर्पज हमें अलग से समझना होगा। अब इंडोर प्लांट्स में हम अगर ये बात करें कि कुछ हमारे पास इंडोर प्लांट्स हैं और हमें जो है इतनी सख्त गर्मी में किसी को अगर एयर कंडीशनर या एयर प्योरीफायर की ज़रूरत है तो ये पौधे तो उनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे छोटे पौधे हैं, बालकनी में है या रूम में है या किसी ऑफिस में है। लेकिन वो जो है इंडोर प्लांट्स हमारे एक विजुअल कंफर्ट और इंसान की नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं और इनको बहुत अच्छा बना देते हैं। फिर जैसे मैंने पहले भी बात की कि माइक्रो क्लाइमेट जो हमारे बैल्कनी का है या कोर्टयार्ड का है या हमारे पास टेरेस का है, तो ये भी जो है वो इंटरेस्टिंग लोकेशन हमें देता है और इसी पे जो है बहुत खूबसूरत जो है वो प्लांटिंग हो सकती है और इससे जो है बहुत अच्छे पौधे उग सकते हैं। जैसे हमने आजकल महंगाई है और बाकी चीज़ों पे भी हम देखते हैं, तो हम घर की बैल्कनी में या घर का छोटा सा जो कोर्टयार्ड है या लॉन है उसमें हम अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। उससे न सिर्फ हमारा जो है एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी, हमें जो है फिर डिफरेंट सब्जियां भी मिल सकती हैं, छोटे फ्रूट्स भी मिल सकते हैं, और इससे जो है फिर वही बात आ जाती है कि आपका पर्पस क्या है प्लांट लगाने का, और उससे हमें फिर जो है सिलेक्शन करनी पड़ती है और हर क्लाइमेट के लिए या हर इलाके के लिए अलग प्लांट्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। अगर आपने इंडोर लगाने हैं तो जैसे रबड़ प्लांट है या डिफरेंट टाइप के कैक्टस प्लांट्स हैं, वो बहुत अच्छा एक तो इन्वायरमेंट बना देते हैं और दूसरा फिर बैल्कनी में अगर आप आएँ तो हम कोई क्रीपर लगा सकते हैं, कोई बेल लगा सकते हैं, तो ये चीज़ें इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट करती हैं। और फिर एक दो पौधे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा मोहल्लेदार है या कोई शॉप पे आने वाला बंदा है वो देखता है, मेरे ऑफिस में आने वाला बंदा अगर वो देखता है उसको खूबसूरत लगता है, तो उसके अंदर एक सोच डेवलप हो सकती है कि मैं भी लगाऊँ, और इस तरह करते करते वही बात के कतरे कतरे से जो है वो दरिया बनता है, तो लोग इकट्ठे करते जाएंगे तो माइक्रो क्लाइमेट जुड़ते जाएंगे तो एक ओवरऑल क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है।
0: बिल्कुल जी, अच्छा टाइम भी बहुत लिमिटेड है और लास्ट में हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सोच के साथ कि एक पौधा एक सोच और एक बेहतर पाकिस्तान?
1: जी बिल्कुल, मैं एक यही पैगाम देना चाहूंगा कि एक पौधा एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान का मतलब मेरे लिए यही है कि हरियाली को सिर्फ डेकोरेशन पे ना देखें, आप अपने लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको समझना चाहिए कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें अपने लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने डेली की रूटीन में इसको शामिल करना होगा, तो जाकर हम जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से कुछ ना कुछ जो है वो मुकाबला कर पाएंगे, और ये हमारी अब की ज़रूरत भी है। हीट वेव्स आती हैं, डिफरेंट जो है वो आपने देखा होगा कि बारिशें एकदम जो है अनइवन हो रही हैं, ये इन चीज़ों के लिए हमें प्लांटिंग लगानी होगी। जैसे यहाँ पे चाइना में, मैं यहाँ हुआचांग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं, अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो रोड के ऊपर भी प्लांट्स लगे हुए हैं। हम सोचते हैं कि रोड के ऊपर प्लांट्स वो नहीं लग सकते, ऐसा नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर कुछ लोग समझते हैं कि प्लांट लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, आप लगा कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है। तो यही पैगाम देना चाहूंगा कि हमें जो है वो प्लांट्स को अपने लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ के आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। तो आज का सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है और हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का, और आप सुन रहे हैं एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ हम लेंगे आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस जिन लोगों ने कमेंट कर दिए हैं, मैं देख रही हूँ शिकायतों वाले कमेंट सबके देख रही हूँ। अच्छा, स्मार्ट किशोर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मैं वहाँ लाइव पे ढूंढ रहा था आपको, यहाँ आप छुप कर शो कर रही हैं। हाँ जी, मैं छुप छुप के शो कर रही हूँ, और कहते हैं कि वो शो खत्म हो गया, वो शो खत्म नहीं हुआ, असल में वेनसडे को उसका ऑफ होता है, और वेनसडे को हमारा एज इट इज जैसे जिंदगी गुलजार है प्रोग्राम हुआ करता था वो होता है, ठीक है।

जी सादा अल्फाजों में कहूँ तो वेडनेसडे को हम विदाउट स्पॉन्सरशिप जो है शो करेंगे, और विदाउट स्पॉन्सरशिप जो कि वेडनेसडे को शो हुआ करेगा, वेडनेसडे के अलावा पूरा वीक स्पॉन्सरशिप जो शो है वो हुआ करेगा. इसके अलावा जी स्मार्ट किशोर कहते हैं कि सिस आप कॉमेंट देखती नहीं फिर शिकायत करती है कि आपके सवालों का जवाब देता नहीं देता, इट्स नॉट फेयर. अच्छा, मैं देख रही हूँ कॉमेंट और मैंने अभी आपके सारे कॉमेंट देख लिए हैं. और इसके अलावा ये बात अलग है कि अगर आप लोग कॉमेंट करके डिलीट करते हैं फिर आप कहेंगे आपने हमारे कॉमेंट देखे नहीं थे, तो फिर ये चीज अलग है. इसके अलावा जी और कौन कौन है हमारे साथ, नज़ीर खोसो ने हमें कमेंट किया है जी, हमेशा की तरह हमें मैसेजेस भी रिसीव होते जा रहे हैं. गोट मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू हमें सुन रहे हैं. इसके अलावा जी इन्होंने दो मैसेजेस कर दिए हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, और कहते हैं लाजवाब शो. ओके, क्या ख्याल है, टंग ट्विस्टर खेलें क्या?

0: अच्छा आज का टंग ट्विस्टर है कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी, ये कहना है ठीक है, कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी, कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी, इसको कह के दिखाएंगे और जो ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को। ठीक है जी, 15 मिनट है ऑलमोस्ट मेरे पास, ठीक है जी, तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है हम आप लोगों की लाइव कॉल्स ले लेंगे और ये बोलते बोलते हमारे पास 13 मिनट रह चुके हैं। खैर हम चलेंगे आगे और गाना एक और प्ले करूं, इसी गाने के साथ हम कॉल्स लेना शुरू करें 03-000-1134-88, इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग। कच्ची खीरे की कच्ची ककड़ी ये कहना है, कॉलर लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: शिकागो से जमालदीन भाइयो।
0: जमालदीन भाइयो कैसे हैं, ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे? तो बोले कली कच्ची नहीं, कच्ची कच्ची ककड़ी, कली कच्ची नहीं, कच्ची ककड़ी, कच्ची खीरे की कच्ची
1: ककड़ी।
0: ओके ओके, जमालदीन भाई भाई बात कर रहे हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके और कुछ कहेंगे?
1: माशाल्लाह लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा ख्याल रखे।
1: मेहरबानी।

सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ कॉलर्स भी मेरे साथ होंगे मौजूद. अच्छा, इसके अलावा स्मार किशोर का कमेंट आया है जो सॉन्ग सरदर्द ने गाया, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था और सिंगर भी, और मैं कल कोशिश करूंगा यही सॉन्ग गाऊं अगर कॉल लग गई तो. चले, ठीक हो गया, डन हो गया.

आज का तंत्रशिक किसने अच्छा अच्छा बोला है? वो बोला है जो जमालुद्दीन भयो ने और आसिफ अली चाचा ने. काफी अच्छा तंत्रशिक बोल दिया और कह गए. और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है और मैं जल्दी से चली जाऊंगी. सो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजी. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजी रुखसार. साइन आउट. टेक केयर. गुड बाय. अमान खुदा. अल्लाह हाफिज़.

0: आलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: अंतर्गत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319155724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जब बात आती है तो जनाब ऐसा तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि भाई खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल के दौर में देखा जाए तो हर कोई जो है वो खूबसूरती के चक्करों में पड़ा हुआ है और उनको चाहिए होता है कि भाई बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें बताए जाएं जो हम लगाएं, बस हम ऐसे जादू की छड़ी फिर जाए और हम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए। और जब आप बहुत सारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर और जब लगाने के बाद आपके चेहरे पर निखार तो नहीं आता लेकिन आपके चेहरे की स्किन जो ना वो बिखर जरूर जाती है, आपके चेहरे पर बहुत सारे इस तरह की चीजें आ जाती है जो कि भाई देखी नहीं जाती। अगर आप इन तमाम चीजों से तंग आ चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, आपका यही एक कहना है कि भाई सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे ही होते हैं, तो मेरी जान ऐसा कोई सी नहीं है। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो यूज है ना आप लोगों की खूबसूरती के लिए इस तरह से भी जरूरी है, इस तरह से भी काम करता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आप लोगों की स्किन के लिए फार्मूले इजाद करते हैं, फार्मूले बनाते हैं। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हो, ये मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोग तसल्ली से और आराम से लगाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी, जैसे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है मेडिकेटेड फार्मूला तो है ये आप जानते हैं, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है क्या ये बात आप जानते हैं? बिल्कुल, जो लोग रेगुलर मुझे सुनते हैं वो लाजमी जानते होंगे, बाकी जो लोग मुझे पहली मरतबा सुन रहे होंगे उनके लिए नई बात होगी। तो आप जो लोग मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं आप जरा सुकून से सुनिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये एक 2-in-1 फार्मूला भी है। और 2-in-1 फार्मूला का क्या काम होता है भाई, तो 2-in-1 जो फार्मूला होता है ना वो आप लोगों की स्किन के लिए यानी कि ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। वो कैसे, जब आप मार्केट जाते हैं या फिर सैलून वगैरह जाते हैं बहुत महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं तो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम की तरह मिल रही है, ये एक नाइट क्रीम है, आप लोगों का टाइम बच जाता है, बस आप नाइट क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिलते हैं, मेन पॉइंट जो है शो स्टॉपर अगर इसकी बात करें तो वो भाई आप लोगों को रिजल्ट्स मिलने वाले हैं फेशियल वाले। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो ये बात आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो फेशियल वाले रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्या बात है भाई साहब। तो ये जो आप घंटों घंटों बैठकर अपने लिए सैलून्स में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं आप लोगों के, आप ऐसा काम कीजिए मुनासिब सी कीमतों के अंदर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर आइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन के ऊपर सूट करती है, यानी कि अगर आपकी स्किन ऑयली हो, सेंसिटिव हो, डार्क हो या फिर ऐसा है कि बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन टाइप स्किन हो जाती है आपकी, सर्दियों में अलग हो जाती है, गर्मियों में अलग हो जाती है, तो हर स्किन के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल सूटेबल है। और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप हर मौसम में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा वाला कोई सी नहीं है कि भाई सर्दियां आ रही है तो सर्दियों में लगाएंगे, आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों की स्किन की ना प्रोटेक्शन भी करेगी और आप लोगों के चेहरे पर खूबसूरती भी लाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगा रहे हैं नहीं मुझे बताइए, और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने की ये भी प्लस पॉइंट है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बड़ी परफेक्ट से रिजल्ट मिल जाते हैं। तो सिर्फ 2 रातों में अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं बिना किसी केमिकल को लगाए तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो यूज होगा ना आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप भी ट्राई करके देखिए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए और आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे लाजमी बताया करें, क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में शामिल करना होगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती को नरम और मुलायम बना देती है, खूबसूरत सा एहसास आपकी स्किन के अंदर आ जाता है और आपको लगता है कि भाई अब तो जिंदगी परफेक्ट हो चुकी है। अगर आपकी शादियां हो रही हैं तब तो भाई परफेक्ट है कि आप लाजमी लगाइएगा, ये जो आप तरह तरह की ब्लीचिंग लगाते हैं, फेशियल्स लगाते हैं, इनसे जरा गुरेज कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, क्योंकि 2 रातों के इस्तेमाल के फौरन बाद आपको मिल जाएगा परफेक्ट वाला हुस्न, परफेक्ट वाली खूबसूरती और आप बन जाएंगे हसीन से भी हसीन। अच्छा जी, तो मैंने आज जो है ना सवाल आप लोगों से जो पूछा है वो तो बिल्कुल आप लोगों से पूछेंगे, लेकिन आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिनको नहीं पता कि भाई अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहें तो कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स के अंदर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मिलना चाहिए, उसके लिए आपको नंबर बताऊंगी, उस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा और नंबर क्या होने वाला है नोट कीजिए। ओके जी, तो पहला नंबर है 03
1250259 07 बुड़ी 312 पंजवीह 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 0332738 4309 बुड़ी 332 73 84 309 ही नंबर्स आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था. सो बाबा देर साजी हाणे तव्हां नंबर ते राबितो कयो, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो. तारिक भाई वेठो आहे, तव्हांखे रिस्पॉन्स ॾींदो. तारिक भाई खे ॿुधायो हाल अहिवाल ॾियो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां परचेज़ करणु चाहियो था पर तव्हांजे एरिया में कोन मिली रही आहे, सो अवेलेबल कराईंदा रहो ऐं ख़ूबसूरत थींदा रहो. ओके जी, सो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, ये जो आप डेली बेसिस पर सुन रहे होते हैं हमारा प्रोग्राम, आप लोगों को तो मुझे लग रहा है कि भाई सारी चीजें याद होगी, सारी बातें याद हो चुकी होंगी. आप मुझे ये बताइए कि ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि भाई विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स एड किए गए हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, तो मुझे बताएं कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का क्या काम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, क्या यानी कि इसके फायदे आप लोगों को मिलते हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन रखी गई है. तो ये आज आप मुझे बताइए 8881 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाइए. आपके मैसेजेस बिल्कुल मुझे मिलते जा रहे हैं, तो मैसेजेस की जानिब आया जाए. हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर आप हमारे साथ हैं, तो एक मिनट जरा.

हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. पोस्ट को लाइक और शेयर जो लोग करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत हो जाएंगे. हाँ जी, जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. बहुत सारे लोगों को बताना है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाना है. यासीन खान भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, और एसन अरबानी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद कहते हैं. ओ माई फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान जी, कैसी आप, वेलकम कहते हैं आपको दिल से. आपको भी दिल से वेलकम कहते हैं जी, क्या याद करेंगे. और मीर मुमताज अली जदोई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, ये शो इज वेरी वेरी नाइस. गोट आगा खान जदोई लाड़काना से आप हमारे साथ मौजूद है. मुमताज अली जतोई भाई आपको भी खुश आमदीद. किशोर भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम अदा. किशोर हाजरा तवानजी महफिल में. किशोर भाई के चौथा भली करी आया किशोर भाई. अबासी भाई लिखते हैं कि सिद्रा योर स्माइल इज ब्यूटीफुल. थैंक यू अबासी भाई. और हमारे साथ हैं जी निजाम अली भट्टी. निजाम मोहम्मद भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मटियारी से आप हमारा शो सुन रहे हैं. कहते तमाम बेहतरीन शो है, जबरदस्त अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना लगाइएगा. जी जी बिल्कुल, अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना आपको में सुनाएंगे. वहीं भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद. अदी ठीक है, तां बुधा की आए हो, मजे में आए हो. ऐसन कहते हैं टाइम का तो पता ही नहीं चला एक. हाँ भाई, क्या मतलब आपके यहाँ अभी सूरज निकला है? हमारे यहाँ तो दोपहर हो चुकी है. उनका अलावा फहीम भाई तमा लिंक शेयर किया, ओके तमाम जो गानों अलाइंदासी. और अलीशा हमारे साथ हैं, प्यारी अलीशा क्या कहते हैं, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, क्या बात है जी. और मुझे बताएं अलीशा, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर चुकी हैं, आपको कैसा रिजल्ट मिला है? और लिखती है कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और आपने नूरजहां और अच्छा ये शायरी लिखी है. मैं कहा नूरजहां का गाना सुनना चाहती हैं आपको. चलिए आपकी शायरियां बिल्कुल शामिल प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन मेरे पास गाने भी हैं, तो साथ साथ हम जरा गाने भी एंजॉय करते रहें. और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. लाइक करते नहीं है भाई पोस्ट को, इतनी कंजूसियां आखिर किस बात की? क्या मतलब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी नहीं लगा रहे हैं, इतनी कंजूसियां किस बात की? इतना पैसा बचाए छा तो बंगला ठहरा न बाबा. डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी जो खूबसूरत रहो, आई खुश रहो.

आज आप लोगों से पूछ लिया है कि मुझे बताएं ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, तो इसका क्या कमाल है जनाब? डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की भी एडिशन रखी गई है ना, तो इसका क्या रोल होने वाला है ये आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो डेली आप लोगों को बताती हूँ। आज आपकी बारी है कि आप भी मुझे बताइए, मुझे पता चले कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो कितना गौर से मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, या फिर ऐसा वाला सीन है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर नजर मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं कि जी अदी लगायूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम छोटे मात चवान थो जेके भी बुधंदड़ आयन उहे भी इस्तेमाल कन पप्पू थी वेंदा। अल्लाह वाजी गाल गई थव बुद्धो था ना तां सब लगाए बाबा नजर मोहम्मद भट्टी जिया तां भी पप्पू थी वेंदा। और अलीशा कहती है कि नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। आपने तो गाने लिख दिए जी हमारी पोस्ट पर, कहती मेरे लिए हर खुशी का मतलब आपका साथ होना है। बहुत शुक्रिया अलीशा प्यारी स्वीटी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है नहीं ये भी साथ साथ बताते रहिए। और वासु भाई लिखते हैं कि तेरी सादगी तेरी आजजी तेरी हर एक अदा कमाल है, मुझे फख्र है मुझे नाज है बस मेरा यार बेमिसाल है। क्या बात है जी, क्या बात है। इकबाल भाई हमें सुन रहे हैं ब्लेड सोनो खान लाशारी, मीरपुर खास से सुन रहे हैं बाजी सिद्रा, नाइस योर शो, थैंक यू। अच्छा हसनैन रजा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम हसनैन रजा, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम थारो शाह से सुन रहे हैं। ओके जी, थारो शाह में आपको पता है ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी थारो शाह में अवेलेबल करा रखी है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो जितने भी थारो शाह के लिसनर्स हैं वो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, ना सिर्फ आप खूबसूरत हो जाते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहती है वो ऐसे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो कोई टेंशन नहीं, कोई आपके चेहरे पर चिकचिक नहीं होगी, ऐसा जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना तो आपको ऐसे महसूस होता है कि भाई इसको बस हटा देना चाहिए चेहरे से, तो ऐसा कोई सी नहीं होगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत एक क्रीमी सा फार्मूला है और बहुत एक अच्छा सा फार्मूला है, और ये 2-in-1 फार्मूला है, तो ट्राई करके देखिए, यकीनन आपको भी मजे आ जाएंगे। अच्छा ये हमारे साथ है, हेलो विद आरजे सिद्रा मुस्कान जी, आप मुझे मेरी फरमाइश का गाना नहीं सुनाती हो क्यों? आज आपका गाना सुनेंगे, आप अपनी सीट पर बस बने रहिएगा। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ मौजूद है, सलाम खुलूस, वालेकुम अस्सलाम, मेलसी से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं आपको भी। और अब्दुल गफार भाई थैंक यू। किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक अदा असा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पढ़ो, आज सच में माइक्रोसॉफ्ट पढ़ो तो चलो मुझे बताओ चाहूँ

बिल्कुल जी, आज आप लोगों का इम्तिहान है, आज आप लोगों का जो है ना वो ऐसे समझ लीजिए एग्जाम डे है कि आप मुझे बताइए, डेली आप सुनते हैं ना मेरा प्रोग्राम, डेली आप लोगों को पता है कि मैं जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के बताती हूँ आप लोगों को डे स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये फला फला चीजें ऐड की गई है, ये फला फला चीज का ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इसका ये फायदा है, उसका ये फायदा है, तो आज आप मुझे बताइए कि डे स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं तो इसका क्या काम है, आज बिल्कुल आप मुझे बताइए, 888-1 पर बताइए या फेसबुक पर बताइए, आपकी मर्जियां, आय हाय, पोस्ट को लाइक और शेयर भी करते रहिए।

कासिम खान कहते हैं कि आपको बताया था ना, मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम की 2 डब्बी खत्म कर चुका हूँ। बहुत वेरी नाइस रिजल्ट मिला है, बहुत ब्यूटीफुल खुशबू भी है। अभी 3री डब्बी लेकर आया हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम की। क्या बात है जी, बढ़िया हो गया ये तो। और कहते हैं कि बस शमन जी गाने जी पा रहे थे। हाजिर शमन जो गानों वाला था। हसनैन कहते हैं कि मेरे पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। क्या बात है हसनैन रजा, आपका जनरल स्टोर है या फिर आप परचेज करके आए हैं, बताएं तो। और जी हमारे साथ है चेतन कुमार। चेतन कुमार कहते हाय, आई एम चेतन कुमार, मिठी थर पार्कर से आप हमें सुन रहे हैं। वाजीवा, क्या खूबसूरत और 100% तेज आवाज है आपकी जी, फुल एनर्जेटिक। आप बताएं कैसे ठीक ठाक है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है वहां पर। यार प्रदेशी भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सदरा, आपके क्या हाल चाल है, आपका काफी दिन बाद शो सुना है, अच्छा लगा हमारी हाजिरी कबूल करना। ओके जी, चेतन भाई कहते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह, थैंक यू चेतन भाई। अबू अनीफ लिखते हैं कि क्या पता जन्नत में हम भी ना मिले, हम यहाँ जात का मसला है, वहाँ दर्जात का मसला हो सकता है। क्या बात है, नसीबो रेड का गाना सुनना चाहते हैं। सुनाते हैं आपको। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि आपके टॉपिक का आंसर तो आप खुद बार बार बता रही हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम की पब्लिसिटी में, तो आप बताएं ना कि असल पॉइंट क्या है, मैं आपको पॉइंट पर लाना चाहती हूँ। समझ आइए, तो वह कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। क्या मतलब, आपको वो इशारा अभी तक नहीं मिला? अरे भाई। मुझे बताइए ये जो वाइटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, इसका क्या काम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, क्या रोल प्ले कर रहे हैं वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स? मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपने जो इतने दिनों से मेरा प्रोग्राम सुना है, तो कुछ सुना भी है, कुछ पल्ले भी पड़ा है, या एवं सिर्फ गाना लगा दो वाला सीन है?

लड़ाई को शेयर करते रहिए और वहीं भाई कहते हैं कि आंखें खराब हो गई बच्चों को पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। जीते जी अपने बाप को ऐनक नहीं देते खरीद कर, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ओके वफा मुमताज अली खोसो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद। वफा मुमताज अली खोसो, कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम अस्सलाम, शो तमाम लाजवाब आए, थैंक यू प्यारा भाई। पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और यहाँ पर टाइम हुआ जी लेते हैं न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's too check is got to know why.
1: D Skin Beauty Cream Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: हम बातें चढ़ाई जी कोशिश कर रही है लॉन्ग मार्च लाए के भी केपी के जहाज सब वसीला इस्तेमाल कया पाया वजह ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी थी आए अफगान पॉलिसी थे पीटीआई खान सिवाय समूरी कौम मुतफिक है. खैबर पख्तूनख्वा में वधंदड़ दहशतगर्दी के हर कीमत ते रोकणो पवंदो. केपी के जे अवाम जो दहशतगर्दी खिलाफ़ कुर्बानियूं सारा जोगियूं आहिनि. ख़्वाहिश आहे त केपी के बि मुल्क जे ॿियनि सूबनि जीअं तरक़ी करे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जूं वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं. वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी. वज़ीर आज़म जे कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत. हिन वक़्तु ख़बर नाहे ईरानी हुकूमत ऐं मुल्क जो इंतिज़ाम केरु हलाए रहियो आहे. ईरान जो ॿियो नंबर क़यादत बि ख़तम थी चुको आहे. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जी सूरतहाल इंतिहाई संगीन आहे. ख़बर नाहे त ईरान खे केरु हलाए रहियो आहे. अमेरिकी नायब सदर जे डी विंस चयो आहे त वॉशिंगटन ईरानी सदर ऐं परॾेही वज़ीर सां राब्ते में आहे. जंग जे ख़ात्मे लाइ यूरेनियम जो रचाव घटाइण वारा वाइदा काफ़ी न आहिनि. तहरान खे यूरेनियम जे रचाव में वाज़े घटाई करणी पवंदी.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream. मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
6: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई.
5: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी.
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000.
7: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की. ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
8: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
8: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
7: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है. सुपर वाइट.
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ. अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है. गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे. सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार. फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर. नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है. आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं. पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699.

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजी दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-3992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

भी आप इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत हो जाती है, खूबसूरती की दुनिया में आपका भी नाम हो जाता है। कई बार तो ऐसा वाला सीन हो जाता है कि भाई हम अपने चेहरे को समझ नहीं पाते हैं, चेहरे पर कौन से प्रोडक्ट लगाने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से अवॉइड करना चाहिए, और इस तमाम तर सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि बीच में हमारा चेहरा जो ना वो बेचारा खराब हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर अप्लाई कर चुके होते हैं। तो आपकी स्किन ज्यादातर जब सेंसिटिव होती है ना, तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब किया करें जो कि थोड़े से लाइट हो, मेडिकेटेड फार्मूले हो और आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो, और खास करके ऑल स्किन टाइप भी हो। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, और मेन बात ये है कि भाई अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे और رابطہ करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाएगा। बिल्कुल जनाब, सो इस्तेमाल करते रहे और खूबसूरती को जरा पहचानिए, और साथ ही साथ अगर आप ना ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताएं कि आपको फीडबैक कैसे मिलते जा रहे हैं। और इन खा अलावा जिन जिन माण्हुनि इस्तेमाल किया बागबा जेके असांजे आस पास आहिनि जंहिंखे असां सुञाणू था, त उन्हनि माण्हुनि जो ॾाढो सुठो असांखे रिस्पॉन्स मिली रहियो अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणण खां पोइ असांजी स्किन जेका आहे ग्लो करणु स्टार्ट थी विया, चेहरे जा जेके प्रॉब्लम्स हुआ दूर थी विया आहिनि, ऐं ख़ासि करे तव्हांजे चेहरे ते जेको निखार आहे न उहो अची वियो आहे, ऐं तव्हांखे जेके रिज़ल्ट मिलिया आहिनि अहिड़ा मिलिया आहिनि ॼण तव्हां कोई महांगो फेशियल करायो आहे। अगर आप भी अपने पैसों को बचाना चाहते हैं या फिर अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो आपको चाहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप करके देखिए। मैं इतनी जब ये बातें बताती हूँ ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, ये तमाम बातें सच है जनाब, आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना तमाम दर चीजें ऐड की गई है, जैसे कि इसके अंदर विटामिन बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को बिल्कुल जी प्रीमियम फार्मूला बना देती है। तो अगर आप भी कोई प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए हाजिर है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, आप खवातीन भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल मजेदार बात है कि आप सब लोगों के लिए है। और जी ये बात आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को वो जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर ही तैयार किया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो दो रातें लगाएं और अच्छा सा रिजल्ट हासिल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये आपको मुनासिब सी कीमतों में मिल रही है, तो आज ही अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास निशानी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, क्योंकि जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते ना उनको नहीं होता पता कि भाई अगर आप परचेज करने जा रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप लोगों को दुकानदार कोई और प्रोडक्ट थमा देता है, कहता है कि भाई ही वठी वनो ही तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, उन्हें खबर हूं तुम पढ़ियल ना आई तुम पढ़ी ना सको। तो अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वनो था तो यह निशानी तुम पांजे जहन में रखी छो, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिका है उनके डब्बी के मथा डॉक्टर माई जो फोटो लगल है, और डॉक्टर माई जो फोटो ऐसी कर खबर पेजी वी बाबा ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, इनको कलर आयो वाइट थोड़ो हल्को ब्लू कलर है। सो यो जदी तुम कॉम्बिनेशन डिसी वनो तो खबर पड़ी वी बाबा तुम सही प्रोडक्ट वो पाया, बाकी जी पढ़ल उनके तो खबर वन वन अखरन से डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखल है जो तुम नालो ऐसी परचेज कर सो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश मिली रो है वो भी वह न विसारींदा, तुम लाजमी ट्राई करो जनाब। खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से ही आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कीजिए। क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते महंगे हो चाहे वो कितने सारे, या फिर वो ऐसा दावा करता हो कि भाई आपके चेहरे को अच्छा बना देंगे, गोरा बना देंगे, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट का यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि आप वाकई किस ट्रैप में फंस चुके हैं। क्योंकि जब आप एक मर्तबा कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा लेते हैं ना, तब उससे जान छुड़ाना और अपनी स्किन को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम चीजों से बचिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए। डी स्किन का फार्मूला बहुत सेफ है आप सब लोगों के लिए, नॉर्मली आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अब तो खैर से
सर्दियां भी आ रही हैं, तो सर्दियों में तो वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अगर आप भी इस तरह का कोई सीन बना रहे हैं या बना चुके हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हमेशा याद रखिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद ला देगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमाम भी पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइन चाहिए था तो तमाम की डायल करो आ 033-27-38-43-09 बुड़ी 300 ट्रे नंबर आ 888 point 888 point 8 हमारा पेज है आप वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिलती है उसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे तो जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए जनाब कैसी कंजूसियाँ। ओके, सो ये तरीके कार फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों ने किया या फिर अभी तक रहता है, और रहता है तो क्यों रहता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं चाहती हूँ कि जो आप गलत से प्रोडक्ट लगाना शुरू करते ना उनसे तो कई गुना बेहतर है कि आप कोई अच्छा सा, कोई प्यारा सा और कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जो आपके चेहरे पर खूबसूरती देने के साथ साथ आपके चेहरे पर निखार भी लाए, आपके चेहरे की हिफाजत भी करे और आप हमेशा के लिए खूबसूरत भी हो जाए। अच्छा हाँ, यह गाल भी तासा शेयर करनी हला कुछ मानन के ये लगन हुआ था बाबा असा प्रोडक्ट लगायूं था आई प्रोडक्ट लगाने से अगर छड़े दीदासी तासा के जो रिजल्ट मिलया वो खत्म थी वेदो। अगर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो था त जेको रिजल्ट तमा के मिलयो हुंदो वो तमा जो आए बाबा तांगा केर भी कोने खसींदो चाहे ता प्रोडक्ट यूज कयो था या न था कयो, समझी गया। जेके तांगे खूबसूरती मिलिया वो हमेशा तमा जी खूबसूरती आए आई तमा हमेशा जिला खूबसूरत थी वेंदा। सो मर्द मायो सभी ट्राई करे दिसो, अगर तमा जी घर में शादियां थियण वारियां आइन या तमा जी पांजी शादी थियण वारी आहे तो बाबा छड़ियो सबनी गालन के दुनियादारी के हर चीज के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी चो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। सो ये तो बातें थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। फिलहाल आप लोगों के साथ जो बातें होंगी वो आप लोगों के फीडबैक से रिलेटेड होने वाली, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं तो उनकी जाने भी आती है। और यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाई कहते हैं कि टॉपिक बताओ मैं अभी आया हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि आपने सवाल सुन लिया होगा। और ये हमारे साथी हसनीन रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आ है। बिल्कुल जी, थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा ऑलरेडी अवेलेबल कराए छड़ी है। सो तमा हसनीन वर्ती आ है या कौन वर्ती आ है? उनके अलावा एसन कहते हैं टॉपिक का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, काने वया जगह चवंदा है पेरियो जवाब मां दींदो आया डियो खबर पए। बिल्कुल ओया गाल माने त वेट किया थी तमा जो जवाब मुके छुन मिलियो है। पर डिठो वने तो ऐसे तमाम भी जवाब न डिनो आए सो तमाम भी डियो खबर पवे ठीक है। और हमारे साथ हैं जी एक मिनट जेन कहते हैं कि हाँ जी हम भी लगाते हैं डी स्किन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सिडो, क्या बात है ऐसे ही लगाते रहिए। दर्दे दिल कहती हैं कि टॉपिक चंदा फेशियल वाला निखार देते हैं। ओके अली रजा लगारी भाई कहते हैं सिस्टर नदीम मीरानी प्ले करें, मां कोशिश क्या थी भाग अगर मुख्य मिली हो टाइम बची हो तो तमाम जलाए बिल्कुल नदीम मीरानी हलाए वठंदासी, पर मुख्य तहां बुधायो तो तहां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई आई तमाम का जो सवाल पूछा जवाब था मुख्य छाता जो निदड़ी हमारे साथ माजो दे कहती हाय हेलो
हेलो मैं भी आ गई भला, बहुत अच्छा किया भला तुमने। अच्छा हसनैन कहते हैं कि आबिद भाई ने अवेलेबल कराई थारो शामे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। बिल्कुल जी, आबिद भाई ने थारो शामे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया है। आबिद भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने में। बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कराइए, ठीक है। अवेलेबल तो आप लोगों के लिए अब हो चुकी है, अब ये काम बनता है कि आप परचेज कब कर रहे हैं और आप इस्तेमाल कब कर रहे हैं।

अच्छा पोस्ट के लाके शेयर कयो तो कौन है दर्दे दिल कहती है वाह अमेजिंग सॉन्ग थैंक यू नानू और चाचा कहते हैं माइक्रो बीट्स क्या है ये तो मैंने आप लोगों से पूछा है मैं तो आपको रोज ही बताती हूँ आज आप मुझे बताइए निदरी कहती माँ पप्पू तू मुझे पप्पी ओके लखमीर अबड़ू हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहती मोलाले इस्लाम सिदरा केड़ा हाल है तवाजा तबियत ठीक है अज माँ भी पांच शहर सखर में तो शो बुधा रात वापसी आ कराची जी वो कराची में बुधनासी शो चमन जो गानो बुधायो अच्छा बिल्कुल भामा कोशिश कयां थी तांजी पसंद जो गानो हलाए तो पर तमां जेको सखर मां वणियो था कराची त सखर मां तमां जेको आ न डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस करे लाजमी वंजो मता कराची में मिले न करे सखर में तो मिले थी त तमां सखर मां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस करे वंजो ठीक आ विसार जो न

अरे वाह भाई, किशोर भाई को तो सब पता है। ओके जी ओके। और अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं शहर जेगा बाबा से, कहते हैं अर्ज मोहम्मद गोला, मुजफ्फर अली गोला, अजहर अली गोला, शो जबरदस्त, लाजवाब आवाज आपकी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक माइक्रोबीट्स और वाइटामिन बीट जो होते हैं ना, चेहरे को नरम, मुलायम और चमकदार बनाते हैं। वाइटामिन बीट से चेहरे की खुश्की, दाग धब्बे खत्म करता है। ऐलान खत्म। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जवाब थोड़ा सही नहीं है। अच्छा, ये हमारे साथ अब्दुल्ला अली गुलाब है। ओके, सो अब्दुल्ला अली लिखते हैं कि विटामिन ए बीट्स जो होते हैं ब्यूटी क्रीम में जिल्द को नमी फराहम करने और जिल्द को नरम रखने में मदद के लिए शामिल किए जाते हैं। माइक्रोबीट से क्रीम को जिल्द पर बेहतर तरीके से फैलाने में मदद कर सकते हैं। ताहम उनका असल काम क्रीम के फार्मुलेशन पर मुनसर होता है। इस प्रोडक्ट के दुरुस्त फवायद इसमें शामिल अज्जा और फार्मुलेशन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। ओके, अब्दुल्ला आप मुझे बताएं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं? हाँ जी, जेको मने ना तो पोने की यही चाहिए सजे, बस सही आए को भी थोड़ो मुझे को नदिया लगती थी। तारिक भाई कहते हैं सजाद अली रुस्तमानी मातली से शो सुन रहे। अच्छा, सजाद भाई का गाना हमने कल ही लगा लिया था, तारिक भाई यही वाला गाना लगाया था जो सजाद भाई ने फरमाइश करी है। और रशीद खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, हैदराबाद से आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया नहीं रशीद भाई, बताएं तो हैदराबाद में मिल रही है? वैसे हाँ मिल ही रहे हैं, तो आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा।

सॼो साल जी पहिरियां इहो हाल अहिवाल ॾियो. सभ खां पहिरीं तव्हां खां मां ख़बर अथव छा पुछंदमि. इहो पुछंदमि त सभु हाल अहिवाल छॾियो, सभु ॻाल्हियूं छॾियो. पहिरियां मूंखे ॿुधायो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई अथव कोन लॻाई अथव, क्योंकि जब आप जादू नगरी जाएंगे तो वहां पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके काम आएगी. तो जाइएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम साथ ले जाइएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, आपकी खूबसूरती के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है. और जी हमारे साथ है ये, हाय आपी, कैसी हो, शो इज वेरी नाइस. आई एम सितारा फ्रॉम सुल्तानपुर से. आपी सुनो, हर अच्छा तव्हां गानो लिखियो आहे अहमद मुगल जो. बिल्कुल मां कोशिशि कयां थी सितारा तव्हां जे लाइ गानो हलाईंदासीं. और ये किसी ने मैसेज किया है, सिर्फ बालवीर लिखा है, बालवीर आपको वेलकम कहते हैं. और गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहती आर जे सिदरा मुस्कान. शो तव्हांजो वेरी नाइस आहे. सलाम तव्हांखे, वालेकुम असलाम भाॼो अलवाल. डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई कोन? मां हाणे सभिनी खां पुछंदमि, सभु जेसिताईं न लॻाईंदा तेसिताईं कोन पचर छॾींदीमांव. अलाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम ई इस्तेमालु कराए पोइ जान छॾींदीमांव. चाचा कहते हैं बेटा सिधो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है. चाचा बिल्कुल तव्हांजो गानो हलाईंदासीं, पर जेसिताईं तव्हां सवाल जो जवाबु न ॾींदा तेसिताईं कोन हलाईंदासीं. अॼु मूंखे सवाल जो जवाबु जेको जेको ॾींदो मां हुन जो गानो हलाईंदसि. हाणे तव्हां ते अथव त ॾिसूं केरु केरु गानो ॿुधी सघे थो अॼु प्रोग्राम में.

ये हमारी साथी जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम योर अदू. अदू हैं जी अनवर अली भाई फ्रॉम सोनहरी फ्रॉम ओके. आज जी भाई, आपका बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा. अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से, आपको वेलकम. डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हैं फैमिली में, जियो प्रोग्राम, जियो जी, तमाम भी जियो, जेके जेके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर रहे आए. हाँ बिहार चंदा असा के छूती पाई है चवी तां भी लगा ना के कें चलो आए. अच्छा, पिटोरो से वफा सुल्तान शर हमारे साथ है एंड रामचंद फोजिया का गाना तो सुनाए. ओके, सवाल जवाब दो तो बुध रहा है. महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रहे हैं सिस्टर कुंज सिद्रा मुस्कान. अस्सलाम वालेकुम कुंज, कुंज कुंज हंस के जलाल तो प्ले करो, कंजूसी करती है सॉन्ग सुनाने में, आपकी मर्जी. सो नाइस ऑफ यू. तमाम भी तो ऐसो कड़े कड़े कंजूसी करे वठना आयो ना. अज जी मैं तहां का सवाल पूछा था, जवाब नथा बुधायो तन में, मतलब तहां जी कंजूसी ही मुझी कंजूसी बराबर थी वही सफा बराबर. पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के वठण में तहां कंजूसी न करजो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी छो भाई. हाँ मां सोचा थी तो वाकई रोज रोज मानों जा गाना हलाए हलाए नेठ मां भी थक पई आया. हाँ तवा का अड़ा अड़ा सवाल पुछंदम, अड़ा सवाल पुछंदम जी तान जवाब ही नहीं दई सको. आई मां तहां जो गानो ही ना हलाए सकन सही आ. सो यो हाने रूल हुंदो बिल्कुल बाकायदा, तहां टॉपिक जो जवाब दींदा त तवां जो गानो हलायो वेंदो, न तपो बस जियो करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए से. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां अञा ताईं कोन वरती आहे त बाबा छो न वरती आहे? डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फार्मूलो जेको आहे मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, ऐं 2-in-1 फार्मूलो आहे. यानी कि जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट मिलंदो. ऐं अगरि तव्हां बि चाहियो था त बाबा तव्हांजी शादी थियण वारी आहे, तव्हां सोणा ॾेखारिजो सभिनीनि खां, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था. हर स्किन जे लाइ आहे, हर माण्हू जे लाइ आहे. ट्राए कयो बाबा, सुहिणा सुहिणा थी वेंदा. ऐं हिते टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो. ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए.

0: इट्स 2:30।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एस

0: मर्द की पथरी मसान की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
1: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03

0: आई जैपनी स्टेचिंग मशीन के जरिए जिसमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073529210।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808743।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: شیخ خالد محمد
1: کراچی کے تعلیم
0: پی ایس ایم آر سٹی.

ओके जी, आपको कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपकी खूब

खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई जब आप प्रोडक्ट्स लगा चुके होते हैं, आप लोगों के खूबसूरती में वैसी वाली खूबसूरती नहीं आ चुकी होती है, तब आप लोगों के पास जाहिर सी बात है कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके चेहरे का ख्याल भी रखे, आपकी खूबसूरती भी बढ़ाता रहे और आपके चेहरे पर निखार भी लाए और आप लोगों के चेहरे की हिफाजत भी करता रहे। तो इन तमाम चीजों में एक ही चीज मेरे जहन में आ जाती है कि आप बस सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप यूज करेंगे ना, तो आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद आप लोगों को किसी और प्रोडक्ट लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाबा, तव्हांखे इलाही सारा फ़ाइदा मिली वेंदा। जीअं तव्हां ॾिसो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए था त तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल में रिज़ल्ट मिली वञे थो। ऐं तव्हां ॾिसो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट ॾिए थी, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेतिरियूं बि चीज़ूं एड थियल आहिनि उहे सभु तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न फेशियल वारो रिज़ल्ट ॾियनि थियूं। ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो था त तव्हांजे चेहरे ते ख़ूबसूरती सां गॾो गॾु तव्हांजे चेहरे जी हिफ़ाज़त बि थींदी रहंदी। ऐं तव्हांजी हर स्किन जे लाइ आहे, ऐं तव्हां हर मौसम में लॻाए सघो था। ऐं मज़े जी ॻाल्हि त तव्हां सभु माण्हू लॻायो, मर्द मायूं हर कोई लॻाए सघे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तव्हां बाबा इन्हनि चीज़ुनि खां बचो, जेके ॾिसंदा आहियो अॼुकल्ह मर्द हीअं वञो रोड खां त मर्द जेको आहे सैलून में वेठा हूंदा आहिनि, छमल सले लॻी पई हूंदी अथनि ऐं ख़बर न आहे उहे अलाए कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट तव्हांजे चेहरे ते लॻाईंदा आहिनि। इन्हनि चीज़ुनि खां थोरो बचो बाबा, इहे बहुत अनहाइजीनिक सीन वाला जो न वो हो जाती सिचुएशन। तो आप ऐसा कीजिए, घर बैठिए, सुकून से रिलैक्सिंग माहौल बनाइए अपने लिए। रात के टाइम जब आप सोने लगे तो आप ऐसा कीजिए, डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त फेस वॉश है। ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपके चेहरे को डीपली क्लीन करता है, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो है ना वो एड किया गया। और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना, इसकी एडिशन इतनी कमाल की है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये भी आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फेस वॉश की बात कर रही हूँ। और फेस वॉश जो है ना डी स्किन का, ये आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते। ऐसा वाला सीन नहीं है कि आप टीनेजर होंगे तभी लगाएंगे, नहीं, डी स्किन का फेस वॉश आप सब लोग लगा सकते हैं। आप भी लगाइए और आप भी लगाइए, सब लगायो। एंड डी स्किन जो फेस वॉश जेको तव्हांजी स्किन के हाइड्रेट रखंदो आहे, मॉइस्चराइज रखंदो आहे, ऐं ख़ासि करे सर्दियूं अचनि पई त तव्हांजी स्किन काफ़ी ड्राई थी वेंदी आहे। त जिन माण्हुनि जी स्किन ड्राई थी वेंदी आहे उन्हनि खे त ॾाढी नीड आहे, त बाबा तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए पंहिंजी स्किन खे हाइड्रेट रखो। ऐं उन खां पोइ फेस वॉश करे वठो, तव्हां सफ़ा सही फेस वॉश कयो, राज टाइम ते फेस वॉश लाज़मी कजो, ऐं पोइ चेहरे खे सुकाए पोइ तव्हां चङे तरीक़े सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे छॾियो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां ईअं पंहिंजे चेहरे ते लॻाईंदा जे क्रीम बाबा थोरी तव्हांजे चेहरे ते नज़र अचे, छो त ईअं कुझु माण्हू हूंदा आहिनि बसि ईअं लॻाए करे वरी मसाज करण में शुरू थी वेंदा आहिनि। बाबा नाइट क्रीम खे मसाज न कबो आहे, नाइट क्रीम सिर्फ़ प्यार सां सुकून सां लॻाए तव्हां सुम्ही पओ, सॼो कमु पाण ई कंदी आहे। तव्हांजो कमु आहे सिर्फ़ लॻाइण, जेको तव्हां लॻाईंदा सही आहे, क्रीम लॻाए करे सुकून सां सुम्ही पओ। ऐं सुबुह जो उथी, सुबुह जो उथण खां पहिरीं कमु तव्हां इहो कयो त तव्हां पंहिंजो फेस वॉश करे अचो। फेस वॉश करण खां पोइ तव्हां ॾिसंदा पंहिंजे चेहरे खे आईने में त तव्हां चवंदा आहे हाय मज़ो अची वियो, एॾो भलो रिज़ल्ट पहिरीं चकर में लॻाइण खां ई तव्हांखे मिली वेंदो। त जॾहिं तव्हां ॿियो दफ़ो लॻाईंदा पोइ त सभु तव्हांखे परफेक्ट रिज़ल्ट मिली वेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे बाबा, हिकु घर घर ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम घर घर जो माण्हू लॻाए सघे थो, हिकु हिकु घर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे, जीअं असांखे ख़ुशी थिए त असांजा सुहिणा सुहिणा लिसनर जेके न उहे वधीक सुहिणा थी विया आहिनि। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाए था कोन, मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो। ऐं जेके नंबर्स तव्हांखे ॿुधाए पिया, नंबर ते तव्हां राबितो कंदा रहो। ठीकु हो गया, ओके।

हा बाबा मां तव्हांखे केतिरो ॿुधायां थी जी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में, का ॻाल्हि तव्हां बि समझी वञो। जी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि पाण वञी परचेज करे अचो, छो त जी स्किन ब्यूटी क्रीम जा तव्हांखे इलाही सारा फ़ाइदा मिलंदा। मां जेतिरा ॿुधायां थी न, शायदि हुन खां डबल ते मिली सघनि था। सो तव्हां बि लॻायो ऐं सुहिणा थी वञो। फ़ाइज़ा हली आई अथव, चए थी छो मूड ख़राबु कयो अथई, हालांकि हुजे छो मूड ख़राबु कयो अथई।

जी मैसेजेस हैं आप लोगों के, और यहाँ पर हमारे साथ हैं फजीला, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर स्वीटी। सलाम टू ऑल सिस्टर्स। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं ये हवायू सिद्रा जी, 78 मोरी से राजा हमीरचंद, किशोर कुमार, हीरा भाई, असद अली, जावेद कुर्बान, समेजो, प्ले फोजिया, अच्छा ले मां, कोशिश क्या थी, बिल्कुल तांजी पसंद जा गाना हलाइंदासी, पर तां टॉपिक ते त गालायो नी, फकीर मोहम्मद पाक आर्मी पनो आखिल से हमारे साथ है। सिस्टर तमान जो खिलन डाढो वणंदो आहे, मोला खुश रखे तमा के, थैंक यू फकीर भा, तां जो मोहब्बतू आहे, तां प्रोग्राम में शामिल थिया। चाचो कहते हैं बेटा सिडो, मैंने FB पर टॉपिक आंसर दे दिया है, आप रीड कर लें, मिलकर आपका कमेंट तो हम जरूर रीड करेंगे, नहीं तो आप दोबारा ऐसा करें कॉपी पेस्ट कर लें। और ये हमारे साथ हैं दोबारा से चाचा जी, जी आप ऐसा करें यहाँ पर आप जो है ना वो जवाब सेंड कर दीजिए। अच्छा सागर न्यास चांडू भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अलैहि सलाम अदद मुस्कान जी, जादू नगर वो जाएगा, पूछने से पहले डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीद कर चेहरे पर लगा कर, हाँ जी आप लगा कर बैठे, शायद ये कहना चाहते हैं सागर न्यास चांडू भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर अपनी खूबसूरती में इजाफा लाते लाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये क्वालिटी से कैसे मर्द हजरात खवातीन सभी लगा सकते हैं। कमेंट्स कुछ ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ पर ये मुझे कमेंट नजर आ रहा है, न कराची में मूं वटि आहे स्टॉक डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे त हाजिर चाचू, हाणी डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन्हनि उन्हनि माण्हुनि खे ॾे थो जेके बाबा कराची में वञनि था पर उन्हनि खे नथी मिले जनरल स्टोर तां, त तव्हां चाचे वटां वठी अची सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम, सही आहे चाचा, ॾियो हाल अहिवाल, केतिरा कार्टून वठी रखिया अथव। अच्छा महर इरफान सियाल साहब कहते हैं गुड शो मैम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इज बेस्ट, जी सर जी वेलकम कहते हैं आपको। वहीं भाई कहते हैं कि माइक्रो बीट्स थोड़ा प्रोडक्ट्स में हुंदा आहिन, हाँ अरे कहना क्या चाहते हो। लुबी कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडो जानी, क्या हाल है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, मैं भी ठीक ठाक हूँ और आपका शो सुन रही हूँ साथ साथ हूँ, नाइस शो, सलाम टू निदड़ी एंड मिस यू निदड़ी, कहाँ हो अजु निदड़ी आहे पोस्ट ते वेठी आ, वैसे त बीमार हुई अदि सोइन जे करे कोन पई अची सघे। रमज़ान भाई हमारे साथ बहन सॉन्ग प्ले करो, अदा अजु इहो रोल उठायो आहे, रोल उठायो आहे इहो जेको टॉपिक जो जवाब सही ॾींदो उन जो गानो हलायो वेंदो, सो तव्हां न ॾिनो आहे सवाल जो जवाब, इन जे करे तव्हांजो गानो मथां कोन हलाए सघूं। सवाल मां तव्हां खां इहो पुछो त तव्हां मूंखे ॿुधायो त वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेके आहिनि उहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि एड थियल आहिनि, त इन्हनि जो छा कमु आहे, समझो था। अच्छा निदली कहती है कि काम ये होता है कि फेस सॉफ्ट हो जाता है और स्किन प्यारी हो जाती है, मुखे हिकड़ी छोकरी सही जवाब दिनो है हिम्मत ताई, यानी कि तकरीबन पूरो प्रोग्राम थी चुको है ना, हिकड़ी छोकरी आ हिकड़ी छोकरी आ जे सही जवाब दिनो है, यो मा ताके बुधाई थी वा केडी छोकरी आ, वो ताके थोड़ी देर खां पो बुधाईंदस, पर हाली ना ता में टाइम आए ता बुधायो मुखे। और यासिन खान कहते हैं कि बस जियो करे इस डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, हां जी जियो करे इस, तमाम भी लगाइंदा रहो, दर्द दिल क्या बात है आपकी।

हाँ जी मिलंदो तो पुछी वठंदासीं जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई थी कोन निदड़ी कहती थी कि मेरी एक दोस्त थी बचपन में सितारा काड़े वही हुआ हाने अधी अजय किशोर भाई तुम इलाही सारा कमेंट करी छाया उसे सब तुम कमेंट पढ़ी छो फराज डेहरी ओसामा और फराज की तरफ से सलाम जी वालेकुम अस्सलाम और कहते हैं विटामिन ई बीट से खूबसूरती के लिए होते हैं अच्छा सही सही सही अच्छा मुकुल उमरानी भाई भी हमारे साथ मौजूद है स्टिकर सेंड कर दिए बहुत शुक्रिया हाँ अदो चाहे तो अदा सही कह रहा है ऐसी बहाने सब सवाल पर बात तो करेंगे सवाल ते गालाइण वो जरूरी ना इन खा मुखे यो लगे तो ता सब मानो गौर सा बुधना ता बाबा प्रोडक्ट जे बारे में केडी केडी चीजू असा के बुधाई वनन थियो ये ना ता सुभाणी वरी सदरा को प्रोडक्ट जे बारे में असा का सवाल पछे जेको असा के न अचे अई असा जो गानो न हले गाने जे करे तो तमा कुछ भी करे सको ता सो इसीलिए ये रूल है कि अगर आप सवाल का जवाब सही देते हैं तो आपका गाना लगाया जाएगा खास करके तब तब जब मैं आप लोगों से प्रोडक्ट के बारे में पूछूं तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा कि आपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी बातें आपको बताती हूँ वो गौर से सुननी है गौर से सुननी ताकि आपको पता चले कि भाई क्या क्वालिटीज इन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अकबर जो लोग लगाते हैं उनको तो पता है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से कितने सारे फायदे मिल रहे हैं हमें बाकी जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है तो उनको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के कितने सारे फायदे मिल सकते हैं और हजार भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम हजार भाई वफा शेजादो मक्सी भाई लाड़कानी खां सा के बुद्धि पयो थैंक यू वहीं भाई कहते अदा माइक्रो बीट्स का काम स्क्रब रग अरे भाई स्क्रब वरी काड़ा आची हो स्क्रब जो तो मैं नालो ही न वठंदी आया आई उल्टू तां के मना कनी आ त ये रगड़ी दा न कयो स्किन के क्रीम लगाए करे एसन कहते टॉपिक माइक्रो बीट्स स्किन को

ओके जी, आपने तो पूरा ये पैराग्राफ भेज दिया है मुझे चैट जीपीटी से पूछ के. अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. क्योंकि हमारे काम की तो एक भी बात नहीं थी. अजू भाई हिकड़ो मिरेकल थी वियो आहे त फहीम भाई जा सभु दुका जेके आहिनि उहे फेल थी विया आहिनि. यासीन खंड चओ था त असां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा. बिल्कुलु बाबा, तव्हां लॻाईंदा रहो. हा निदड़ी, मां पाण इहा चीज ॾिसां पई, मूंखे खिल अची पई, पर असां थोरो कंट्रोल कयो आहे. मोहम्मद समान कहते बुआ जी आप

जी जी मोहम्मद जमान भाई, आप ऐसा किया करें कि आप दी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके मुझे बताएं कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कह रही मुश्किल में विझी छड़े हाणी रीड भी कजा कमेंट मुंह पढ़ियो, पर उन्होंने कहा कम की गाल कोन हुई मुझे लाए।

भाई ढोलो तव्हांखे बि मिले त हुन खां पुछजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई अथई ढोला कोन ढोलो अगरि चवे त न कोन लॻाई आहे ढोले खे चइजो वञ ढोला वठी अचो हाणे जो हाणे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कर छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमालु खां फौरन बाद तव्हांखे मिलंदी उहा ख़ूबसूरती जेका तव्हांखे कॾहिं बि शायदि कोन मिली आहे ऐं तव्हां ॾिसी पंहिंजो चहिरो चवंदा वाह साईं वाह ही त कमाल थी वियो असां पहिरियां छो न पिया वठूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और हमारे साथ ही साजिद हुसैन सूमरो कहते हैं सलाम सिद्रा जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो आहे गुड आहे फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना से अहमद मुगल का गाना तव्हांखे सुभाणे ॿुधाईंदासीं तव्हांजे पसंद जा गाना किशोर भाई कहते अदा आउं तुंहिंजी आवाज़ में एतिरो मगन हूंदो आहियां तूं कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा ॾसींदो ख़बर ई नाहे पवंदी ॾिस ॾिस ॾिस

अच्छा महेश सर हमारे साथ है, महेश सर साहब, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। डे स्किन ब्यूटी क्रीम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा अॼु मां अवां सां बिल्कुलु उहा कार कई आहे, तव्हांखे सॼो सिलेबस पढ़ाई, तव्हां खां टेस्ट वरिती आहे, पर उहो चवंदा आहिनि त जॾहिं जेके सदोरा ॿार हूंदा आहिनि उहे कनि ॾेई करे सभु कुझु चीज़ूं सभु सम्झंदा आहिनि, पर जॾहिं टेस्ट ई वारी ईंदी आहे त उहे ई पास थींदा आहिनि, जेके सही तरीक़े सां मतिलबु जेको आहे न उहो जेको बि उन्हनि खे टीचर पढ़ाईंदी आहे उहो सम्झंदा आहिनि, पर जेके निकमा हूंदा आहिनि उहे सिर्फ़ु वेही हा कंध लाहींदा आहिनि। तव्हां बि उन्हनि वारी कार कई आहे, टाइम जेको आहे सफ़ा तेज़ी सां गुज़रंदो वञे थो, ऐं टॉपिक जो जवाब अगरि मां तव्हांखे ॿुधायां त टॉपिक जो जवाब बिल्कुलु मां डेली तव्हांखे नबी न हज़ार दफ़ा त लाज़मी ॿुधाईंदी हुयमि, हज़ार भा खां पुछिजो। अगरि असां हिते ॻाल्हि कयूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको वाइटमिन ई बीट्स आहे ऐं माइक्रो बीट्स आहे न, हिकिड़ा जेके माइक्रो अंदरि एड थियल उहो इन लाइ एड थियल हूंदा आहिनि जीअं फेरी वरी स्क्रब जे अंदरि एड थियल हूंदा आहिनि।

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: ॾियारियो जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आहीं?
1: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836
0: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे खुश्क और बीरोनो की स्किन और इमेज लाइट छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जिनमें आहिन चावर जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, ऐं चावर जो खूबियों जिल्द मां फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे, सिर्फ टिन नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती, हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज के यो बने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: खैबर ऐं खैबर खां पेर वधाए ईंदो शायदि सुभाणे मां बि मार्च में शिरकत कयां परे वज़ीर सां बि मिलणो आहे एमएल वली खान खे एपीसी जी दावत ॾियणी आहे खैबर पख़्तूनख़्वा में वधंदड़ दहशतगर्दीअ खे हर क़ीमत ते रोकणो पवंदो केपी के

0: इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: स्मेल बहुत होता है स्किन के लिए, सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज वाइट जिसके यूज से मेरी रोरी, एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरियंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
4: इर्शाद ऑटोज एंड होंडा, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एट इर्शाद ऑटोज एंड होंडा शोरूम मेहरापुर। नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटर जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इर्शाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0302018-00003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जी
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें एलर्जी एंड मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300338569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अरे खुश्क और बेरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चावर जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन निहन में राइस सीरम जेंस पर हर प्रोवाइड अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद।

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे फट फुर कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ
1: चेक होंडा शोर साइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक कंपनीअ जे मुक़रर कयल याब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

0: जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: सियासी रवादारी को खत्म करके अदम बर्दाश्त, नफरत, गाली गलौच का कल्चर जो है उसे सियासत में दाखिल किया जाए. ये किसी सूरत भी ना कानून, ना आईन, ना सियासी अखलाकियात इस बात की इजाजत नहीं देती.
6: रियासत के यकमाल बनाए को भी मुतालबो नथो मंझराए सके. जाती एजेंडा के कौमी मफाद ते तरजीह न डिनी वे. हुकूमत गालियन जा दर बंद नाहन क्या. पीटीआई जाती मफादन के पासे करे मसलन जे हल लाए अगते वधे. वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी कोशिश करे रही आहे. लॉन्ग मार्च लाइ केपी जा सब वसीला इस्तेमाल कया पिया वञनि. अफगानिस्तान मां दहशतगर्दी थी आहे. अफगान पॉलिसी ते पीटीआई खां सवाइ समूरी क़ौम मुतफ़िक़ आहे. इस्लामाबाद असांजो आहे. लॉन्ग मार्च ज़रूर इस्लामाबाद में थींदो. ॻाल्हियूं ॿीहर थियणु घुर्जनि, ब्रेक न लॻणु घुर्जे. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गुहर चयो आहे त मार्च पिशावर खां ख़ैबर ऐं ख़ैबर खां पीर वधाई ईंदो. शायदि सुभाणे मां बि मार्च में शिरकत कयां. वॾे वज़ीर सां बि मिलणो आहे. एमल वली ख़ान खे बि एपीसी जी दावत ॾियणी आहे. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में वधंदड़ दहशतगर्दी खे हर क़ीमत ते रोकणो पवंदो. के पी जी अवाम जूं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ क़ुर्बानियूं सारा जोगियूं आहिनि. ख़्वाहिश आहे त के पी बी मुल्क जे ॿियनि सूबनि जीअं तरक़ी करे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जूं वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं. वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी. वज़ीर आज़म जी कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत. पीपल्स पार्टी सदाई ज़ाती मफ़ाद खे क़ौमी मफ़ाद ते तरजीह ॾिनी आहे. के पी जे गवर्नर जो अमन अमान बाबति इजलास करण बि ग़ैर आइनी आहे. के पी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी काबीना खे ख़िताब कंदे चयो आहे त पीपल्स पार्टी माज़ीअ में बि ग़लति किरदार अदा कंदी रही आहे. गवर्नर पारां इजलास जी सदारत करणु आइन ऐं जमहूरियत ते हमिलो आहे. के पी पुलिस खे पंजाब पुलिस बणाइण जी कोशिश न कई वञे. के पी हुकूमत सूबे में अमन लाइ संजीदा आहे. वफ़ा पंहिंजी होड़ ख़तम करे. हिन वक़्तु ख़बर नाहे ईरानी हुकूमत ऐं मुल्क जो इंतज़ाम केरु हलाए रहियो आहे. ईरान जे ॿियो नंबर क़यादत बि ख़तमु थी चुकी आहे. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जी सूरतहाल इंतिहाई संगीन आहे. ख़बर नाहे त ईरान खे केरु हलाए रहियो आहे. अमरीकी नायब सदर जी जेडी वेंस चयो आहे त वॉशिंगटन ईरानी सदर ऐं परॾेही वज़ीर सां राब्ते में आहे. जंग जे ख़ात्मे लाइ यूरेनियम जो रचाव घटाइण वारा वाइदा काफ़ी न आहिनि. तेहरान खे यूरेनियम जे रचाव में वाज़े घटिताई करणी पवंदी. अमरीका ईरान जंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर अफ्रीका ऐं विच ओभर जे मुल्कनि जी आबादी खे वधीक मुतासिर कयो आहे. ख़िते में मौजूदु इंतिहाई ग़रीबनि मां अधु ग़रीब पाकिस्तान में रहनि था. आलमी मालियाती इदारे IMF जी नई रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकशाफ़. IMF रिपोर्ट में चयो वियो आहे त ख़िते में जारी तकरार सां तेल जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि. महांगाई सबबि ग़ुर्बत में बि वाध थी आहे. ख़िते में मौजूदु ग़रीबनि मां 48% पाकिस्तान में आहिनि. अफ़गानिस्तान, शाम ऐं यमन में बि ग़ुर्बत वधी आहे. यमनी हौसिन पारां रियाज़ किंग ख़ालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं अबा जे एयरपोर्ट खे मिसाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा. हुसी वड़ाकनि मूजिब सऊदी जी ख़मीस मशीद में बि एयर बेस खे निशानो बणायो आहे. सऊदी अरब हुसियुनि जे हमलनि जी तसदीक न कई. रियाज़ जे ॾखण में मिसाइल खे नाकारा बणाइण जी दावा. वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि रेलवेस में सदारनि बाबति इजलास. शहबाज शरीफ जी ML1 ते कम तेज़ करण ऐं रेलवेस में कारपोरेट तर्ज़ जा सुधारा आणण जी हिदायत. ML1 जी तामीर लाइ कमर्शियल मनसूबनि ज़रिए बैंक्स खां फंडिंग वठण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। शहबाज शेख चयो त रेलवे जी कमर्शियल ज़मीन खे इस्तेमाल करे रेलवे खे बहितर बणाए सघिजे थो। इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ML1 खे 4 हिसनि में विरिहायो वियो आहे। आलमी फंडिंग सां गॾु मक़ामी फंडिंग ते बि कम जारी आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
9: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
10: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
9: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
10: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601001।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मिरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

कराची जी वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जी कार्रवाई मुकम्मल। कमीशन जांच रिपोर्ट 15 अक्टूबर ताईं वॾे वज़ीर खे पेश कंदो। अदालती कमीशन वाके वारे हंध जो दौरो करण सां गॾु 15 ॿुधणियूं कयूं। पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स ऐं खानदान ऐं शाहिदनि जा बयान रिकॉर्ड कया विया। हैदराबाद में पिंजारी थाने जे हद में टिन ॼणनि खे फायरिंग करे ज़ख़्मी कंदड़ DSP मथां दहशतगर्दी एक्ट तहत FIR दाख़िल। मोहम्मद वकास काज़ी जी फरियाद ते DSP अशरफ कुरेशी ते केस दाख़िल कयो वियो। फरियादी मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त DSP अशरफ हुन जे भाइटे नौशाद काज़ीअ खे घिटीअ में गाॾी बिहारण तां गारगंद कई, जंहिं बाद झेड़ो थियो। जवाबदार अशरफ कुरेशीअ फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंमें इरशाद काज़ी समेत 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। DSP अशरफ कुरेशी ऐं संदसि गार्ड गिरफ़्तार। शहदाद कोट वेझो पीउ पुट सां गॾिजी पसंदि परणो कंदड़ धीअ ऐं संदसि मुड़ुस खे क़तल करे छॾियो। कुबो सईद थाणे जी हद ॻोठ गुलाब लाशारी में जवाबदारनि नारी नगमा ऐं नौजवान नदीम खोसो खे क़तल कयो। वारसनि मूजिबि जोड़े कुझु ॾींहं पहिरीं मर्ज़ी मूजिबि शादी कई हुई, जंहिं तां खेन क़तल कयो वियो आहे। खिपरो में नौजवान शहजाद मरी जी कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसन जो पैदल मार्च। मक़तूल जे वारसन 10 किलोमीटर पैदल मार्च कयो। वारसन चयो त 20 ॾींहं गुज़रण बावजूद शहजाद मरी जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। कातिल गिरफ़्तार करे खेनि कानून जे कटहरे में आंदो वञे। दादू में निटपिण जी शादी वारे केस में अहम अकबराई। अदालती हुकुम ते कुंवार घोट ऐं निकाह पढ़ाईंदड़ मौलवी गिरफ़्तार। ॻोठ मियूं खान भंड वासी कुंवार कूंज जो घोट नज़ीर भंड ऐं मौलवी खे गिरफ़्तार कयो वियो। कुंवार जे वारसनि दादू जी अदालत में कुंवार जे नंढे हुअण जो जवाबु ॼाणायो। ॿुधणी दौरान अदालत कानूनी घुर्जियूं पूरियूं न हुअण ते टिन्हिनि जी गिरफ़्तारी जो हुकुम ॾिनो हो। काज़ी अहमद में 5 ॾींहं अॻु ज़्यादतीअ जो शिकार निगरी सां इंसाफ़ न थियो। वारसनि जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज। वारसनि जो चवणु आहे त पुलिस हिकु बि मुख्य जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। समूरनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। ऐं गज़ा ते बेगुनाह फ़लस्तीनियुनि मथां इसराइली जारियत खे 3 साल मुकमल। आलमी बिरादरी गज़ा ते इसराइल जो जारी ज़ुल्म बंदि करण में नाकाम। इसराइल पारां 7 अक्टूबर 2023 ते फ़लस्तीनियुनि ख़िलाफ़ शुरू कयल ऑपरेशन्स में 74,000 फ़लस्तीनियुनि जी शहीद थियण जी तस्दीक। हज़ारे ज़ख़्मी, लखें फ़लस्तीनी बदस्तूर घरनि खां महरूम बणियलु।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही है हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

प्रोग्राम आज सेहत की गाल असाजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन मामून साहब डॉक्टर साहब तुम एक बेहतरीन माशाल्लाह जान डी पेशेंट हो जो तक बस जो बुधा वो सर जो जाहिर उन फायद पो है वो पाँ व्यूज रिकॉर्ड कराया वो है तो बिहार भी उन फायद वन जी सर सर बिल्कुल यह एक हमदर्दी होंगी है सर जी असने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था असाजे लाइव कॉल जो नंबर है 0301-8196-8051 डॉक्टर साहब हर वक्त खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर से सुबह 11 to 5 तीन जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वदनपुटा पेट्रोल पंप कुटड़ी रोड मेरापुर में मरीजों को इलाज कंदा है नोट अंगारे के ढी डॉक्टर साहब की क्लिनिक बंद होंगी है इन में हफ्ते जहा 3 जुम्मो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंगी है बाकी दवा मरीज के स्टोर तुम वी होंगी है

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: कमर्शियल ब्रेक बाद। कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो बीहर मां सभिनी ॿुधंदड़नि खे ख़ुश आमदीद चऊं था। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूण साहब। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-8051 0301-2196-8051। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जे पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक कन, गलो, नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जी खंघि, टीबी, मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधण ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाब इलाजु कंदा आहिनि। प्रोग्राम में हिकु पहिरीं कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं।

0: तव्हांजो हथु जेको आहे सो ऐं इनशाला सही थींदो आहे। हुन दोस्त उहो अमल उन वक़्तु कयो ऐं अलहमदिल्ला उन इहो फीडबैक ॿुधंदड़नि ताईं पहुचायो त अलाह जी महिरबानी सां जेको असां कुदरती ऐं हिकिड़ो ॾस ॾींदा आहियूं त उन जे दौरान हुन उहो ई कयो, उनखे कंहिं डॉक्टर ॾे उन वक़्तु वञण जी ज़रूरत न पई, का बाज़ारू शइ वठी अची हणण जी ज़रूरत न पई ऐं अलाह जी महिरबानी सां हुनखे शिफ़ा मिली वई। या हुनजी महिरबानी दोस्त जी हुन कॉल करे जेको आहे सो ॿुधायो। ऐं ॿियो दोस्त हींअर मशवरो कयो वरितो आहे त कन जे जेको आहे सो यानी ॿुधण जो मसइलो हुन सां आहे त मां दोस्त खे मशवरो ॾींदुसि। हिकु त ज़ैतून जो तेल जेको आहे सो बिल्कुलु कन जे पापड़ी जी या जेके कन जे पोयां उनखे लॻाए सघनि था ऐं बादाम मिसरी ऐं सौंफ़ अदद पाउ वठी करे सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइनि, इनशाला उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु अची वेंदो आहे। वरना उनजी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में आहे, दोस्त खे चवंदासीं त इहे अमल करे ॾिसनि, जेकॾहिं फ़र्क़ु पइजी वञे त ठीकु आहे, वरना पोइ रूबरू ॾेखारे सघनि था। वरी महिरबानी हिकु दफ़ो ॿीहर उन दोस्त जी जंहिं असांजे ॿुधंदड़नि ताईं इहे ऐं असांखे बि इनकरेज करण जे लाइ हुन जेको आहे सो पंहिंजो फीडबैक ॾिनो, वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सेज ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुर पेट्रोल पंप कोटडी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट, डॉक्टर साहब जी क्लिनिक अंगारे जॾहिं बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

0: अच्छा, वो मलेरिया जो कोर्स वगैरह करायो आए?
1: पर सुबह दिनो तो डोज माने सजो दी फर्क कोई भारी 1000 बुखार लगतो तो।
0: अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब वहां के बताए तो रेडियो बोले। जी सर,
2: से एक तो नंढड़ो बार आए या उन नंढड़ मारन जे लाए स्पेशली चंदो आया त अड़ी किस्म जी काप कंडीशन थे त रूबरू डॉक्टर वट जे को ऐसो वनी उन के दिखारन। बी गाली आ त तव्हां जेकॾहिं दवा वरिती आहे त ऐं मलेरिया बि निकिती आहे, उनजो कोर्स हले पियो त मेडिकली ट्रीटमेंट में 3 ॾींहं जेको आहे सो ट्रीटमेंट हुनजी कराई वेंदी आहे। जेसिताईं 3 ॾींहं ट्रीटमेंट हलंदी आहे तेसिताईं इहो बुखार अप डाउन थींदो रहंदो आहे। इन में परेशानी जी ॻाल्हि कान्हे का। जेकॾहिं ज़्यादा तकलीफ़ ख़राब थिए थी त तव्हां उन डॉक्टर वटि रूबरू उनखे ॾेखारे सघो था, वरना ॿिए ॾींहं ते असांखे बिल्कुलु ॾेखारे सघो था। बाक़ी फ़िलहालु जेकॾहिं बुखार तेज़ थिए थो त उन जे लाइ ॿियो कुझु न रुगो मथे ते तव्हां पटियूं रखंदो त बुखार हुनजो घटिजी वेंदो। इहो ई हुनजो हल आहे। ज़्यादा तबियत ख़राबु थिए त उन डॉक्टर वटि वञी बजाए ॾिसो त ईअं थींदो आहे जो पोइ मरीज़ जी हालति वरंदो बिगड़जी वेंदी आहे। यानी तव्हां हिकिड़े डॉक्टर खां दवा वठी आयो, हुन पंहिंजे हिसाब सां दवा ॾिनी आहे ऐं पंहिंजे हिसाब सां डोज़ ते रखियो आहे। तव्हां जॾहिं वरी ॿिए डॉक्टर ॾे वेंदो त हुनखे उहा ख़बर न हूंदी त ॿिए डॉक्टर कहिड़ो डोज़ रखियो आहे, उहो वरी पंहिंजे हिसाब सां ॿियो डोज़ ॾींदो। ईअं अवां जेको आहे सो पंहिंजा पैसा बि ख़र्चु कंदा वेंदो ऐं वरंदो तबियत बि मरीज़ जी ख़राबु करे न वेंदो। बहितर इहो हूंदो आहे जंहिं डॉक्टर खे तव्हां ॾेखारियो आहे उते दोबारा उन ई डॉक्टर ॾे वञी उन ई कंडीशन जो हवालु ॾींदो त उहो अव्हां जे लाइ बहितरु रहंदो। या जीअं अव्हांखे डॉक्टर मशवरो ॾिनो आहे त 1 ॾींहुं 2 ॾींहं तव्हां ट्रीटमेंट ते रखो पेशेंट खे, त तव्हां उन ते ई रखो त वधीक बहितर हूंदो आहे। बाक़ी असां तव्हांखे मशवरो इहो ॾेई सघूं था, तेज़ बुखार में तव्हां मथे ते पटियूं पाणी जी रखी सघो था। इन में खाराइण पीअण जेको आहे सो यानी मानी वग़ैरह पेशेंट खे न खाराइजे त बहितर आहे। नरम दलियो वग़ैरह या ब्रेड वग़ैरह या खीर सां या मुङनि जी दाल या सायूं तूरियूं कारे मिर्च में, इहो जेकॾहिं वॾो आहे नंढो आहे त उनखे सिर्फ़ु खीर सां ई, त इहा ट्रीटमेंट या दलियो वग़ैरह इस्तेमालु कंदो त उन सां जेको आहे पेशेंट जल्दी रिकवर थी वेंदो आहे। जी साईं,
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर साहब, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जंहिंमें गुर्दे पिते ऐं मसानी जे पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरक जो सूरु, नक कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851, 0301-219-6851।
2: जी हा, बिल्कुलु। असांजे जेके ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि ते खे सदाई इहा शिकायत रहंदी आहे त अव्हां आवाज़ जेको नंबर जेको हूंदो आहे अव्हां तेज़ी सां पुकारे वेंदा आहियो। इनजे करे हिकु दफ़ो असां पाण जेको आहे अव्हां ताईं नंबर पहुचाईंदासीं 0301-9196-851, यानी 0301-219-6851। हीअ कॉल नंबर आहे। अव्हां कहिड़े बि टाइम ते जेको आहे सो कॉल करे सघो था ऐं बिल्कुलु ॻाल्हाए सघो था। डेज़ ॾींहनि जो शेड्यूल अव्हां ताईं एसन भाई पहुचायो आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर आउं बि अव्हां ताईं पहुचायां थो त हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं, सूमर जो ॾींहुं, अरबा जो ॾींहुं, खमीस जो ॾींहुं क्लिनिक खुलियलु रहंदी आहे। बाक़ी अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। टाइमिंग अव्हांखे ख़बर आहे सुबुह जो 11 खां शाम जो 5 बजे ताईं, ऐं इन विच में जेको आहे सो अंगारो क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, इहो अव्हांखे ख़बर आहे। जी सर,
0: जी सर, प्रोग्राम जी हिकु ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
2: हा, दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश हूंदी आहे त जेके बि कॉल कनि त महिरबानी करे जेको आहे सो त जेको आहे सो को ज़रूरी ॻाल्हि पुछणी आहे ट्रीटमेंट के दौरान या इलाज के हवाले से वो जरूरी कॉल कर सकन था
0: बिल्कुल
2: गैर जरूरी कॉलन का थोड़ा परहेज कर
0: प्रोग्राम में एक बी कॉल की तरफ नहलासी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अदा कह रहे हैं किथा का अल्हम्दुलिल्लाह अदा ताम बदा ठीक है कह रहे हैं किथा का गलाओ
1: साईं मां कोटड़ी कंबी रखा शायद उस सोलंगी बाबा आर्ज
0: जी जी शाह पूछन चाहे डॉक्टर साहब का
1: सारे ये आर्ज यो आत खारिश थी पई आए खारिश में माना थोड़ा दाणा दाणा संदा फुरड़ी जे हल्की हल्की थिया
0: जी जी
1: तो उने वजह से मां कॉल किया वा के
0: अच्छा ओ कोटड़ी कबीर बिल्कुल वेजो आए डॉक्टर साहब के रूबरू दिखारे तो वधिक बेहतर है
1: केडी जगह से सर
0: ताके सर एड्रेस बुदायो से सामो उदन पेट्रोल पंप जे सामो ही डॉक्टर साहब जी क्लिनिक मौजूद है
1: जी जी
0: वधिक डॉक्टर साहब आवा के बुदाए तो रेडियो बुदो जी सर
2: जी बिल्कुल दोस्त के बुदाई दासी दसो एकड़ी खारिश जेकी आए जिस्म में छो थिंदी आए ओए खबर है खोड़ सर असबाब हुंदन खाधे जो बदल थींदो आहे उनजे करे थींदी आहे अंदरि जिस्म में रत जो बिगाड़ थी वेंदो आहे जंहिंजे करे जेको आहे सो ख़ारिश जा मसाइल थींदा आहिनि इनजे करे असां उन्हनि खे जेकी दवाऊं ॾींदा आहियूं उहे हिकिड़ी कुदरती तौर ते जेकी पीअण जी हूंदी आहे उन में ब्लड प्रिफर हूंदी आहे यानी रत तव्हांजो साफ़ु कंदी आहे ऐं जेके साबुण ॾींदा आहियूं उहो बि ब्लड प्रिफर हूंदो आहे उहो ब्लड खे जेको आहे वॉश कंदो आहे उहो जिस्म खे जेके बि एंटी बैक्टेरियाज़ जेके जरासीम हूंदा आहिनि जेके जिस्म में अची वेंदा आहिनि चमड़ी ते उन्हनि खे जेको आहे हू वॉश कंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां ॾिसो असां निम जेको आहे सो निम जा पन तव्हांखे ॿुधाईंदा त पाणी में काढ़े उन सां विझारियो मरीज़ खे या निम जा गोरा खारायो या जेका सो जेकॾहिं इहो बि नथा कयो त पनीर बोटी यानी पनीर अव्हांखे शहर मां मिली वेंदो आहे अंसारी वटि उनजा सत दाणा और रोज़ाना राति जो पाणी में पिसाए रखो थोरो कड़वो हूंदो आहे पीअण में लेकिन ज़हर ई ज़हर खे मारींदो आहे उहा कड़वाहट अंदरि वञी करे रत खे साफ़ु कंदी आहे ऐं उहो रतु जेको आहे सो बिल्कुलु साफ़ु थी वेंदो आहे लेकिन इहो बि ॾिसो असां वटि मरीज़ चवंदा आहिनि त बसि हिकिड़े ॾींहं में ठीकु थियूं त ईअं न थींदो आहे चाहे असांजी दवा हुजे चाहे इहे जेके अव्हांखे ॿुधायूं था ॾस इन्हनि खे बि कुझु ॾींहं इस्तेमालु करिणो पवंदो आहे त अंदरि वञी अव्हां जे जिस्म में जेके फासिद मादा गॾु थिया आहिनि हुननि खे हू इहे दवा हुनखे साड़ींदी आहे हुनखे जलाईंदी आहे हुनखे ख़तमु कंदी आहे अव्हांजे जिस्म मां जेके ख़राबु मादा ज़हरीला मादा हूंदा आहिनि तॾहिं उहे अख़राज थींदा आहिनि ऐं अव्हांजो जिस्म पोइ बिल्कुलु साफ़ु थींदो आहे न सिर्फ़ु अव्हांजी ख़ारिश ख़तमु थींदी आहे पर इन्हनि ॾसनि पननि सां इन्हनि दवाउनि सां अव्हांजे जिस्म ते जेके ॿिया बि असरात हूंदा आहिनि दाग़ अची वेंदा आहिनि या जेको आहे सो जिस्म में बि हिकिड़ी गरमाइश हूंदी आहे उहा बि अव्हांजी ख़तमु थी वेंदी आहे लेकिन हिते जेको आहे सो तुर्त इलाजु खपे माण्हू वञी ऐं सुयूं हणाईंदा आहिनि ऐं पोइ उनजो आदि थी विया आहिनि साला साल हुननि जी बीमारी न छॾींदी आहे रड़ हूंदी आहे रड़ खनखना हूंदी आहे ऐं सिर्फ़ु इन जे करे जो हू सुयुनि जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि उन्हनि ज़हर जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि उन्हनि दवाउनि जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि जेके उन्हनि खे यानी बर वक़्तु सिर्फ़ु जेको आहे सो फ़िलहालु फ़ाइदो थींदी आहे लेकिन हुनखे मर्ज़ न छॾाईंदी आहे सो इन जे करे महिरबानी करे जॾहिं बि कंहिंखे अहिड़े क़िस्म जी थिए थी त हिकु त पंहिंजे खाइण पीअण जो बिल्कुलु ख़्यालु रखो अहिड़े तरीक़े सां जेकी जिन जेकी शयूं तव्हां सम्झो था तव्हांखे जिन मां ख़ारिश थिए थी अंडो मच्छी वाङणु वॾो गोश्त खटी शइ देग जो चांवर उहे तव्हां हरगिज़ इस्तेमालु न करियो ऐं जेके शयूं ज़्यादा इस्तेमालु तव्हांखे करणियूं आहिनि थधियूं शयूं इस्तेमालु कयो पाणी ज़्यादा जेको आहे सो इस्तेमालु करे सघो था ऐं जीअं मां ॻाल्हि कई त पनीर इस्तेमालु करे सघो था निम सां तव्हां वेझो अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी वेंदो वरना रूबरू ॾेखारे ऐं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराए वॾी महिरबानी
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु प्रोग्राम में ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ हलंदासीं अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जेदा कहिड़े किथां खां
1: अलहमदुल्ला
0: ठीकु आहे ठीक है वडी मेहरबानी सर
2: जी ठीक है वडी मेहरबानी दोस्त जी मेहरबानी
0: स्पेशली सर फीडबैक देने के लिए उन कॉल के यार
2: स्पेशली फीडबैक जेके दोस्त दिना है जिन के फर्क पे जी विंदो है अल्हम्दुलिल्लाह आज ट्रियो पेशेंट है जिन जेको है सो यानी एकड़ी फायदे जी एकड़ी निशानदेही कराई है त अल्हम्दुलिल्लाह उनके फायदो दिसो एकड़ी सुठी गाल है एकड़ो पेशेंट केर मोकले तो उनके फर्क पे तो वरी उन जी ॿियनि खे ॿुधाइण त हुन मां असांखे फ़र्क़ु पियो आहे हीअ हिकिड़ी तमामु बहितरीन जेको आहे सो ॻाल्हि आहे ऐं वॾी महिरबानी भाउ ख़ादिम हुसैन सोलंकी जी
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहब जेके अव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था 0301-8196 ऐं इहो ई साॻियो ई नंबर आहे डॉक्टर साहिब जो कॉन्टेक्ट नंबर डॉक्टर साहिब सां कंहिं वक़्तु कॉल करे कंहिं बीमारी बाबति तव्हां ॼाण हासिलु करे सघो था डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमे छंछरु आचर सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि प्रोग्राम में हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं अस्सलाम वालेकुम
3: छा
0: पुछण चाहींदा डॉक्टर साहिब खां
3: सर मुंहिंजे इहो पंहिंजो जंघनि जे पाड़नि में सूर आहे ऐं बाहनि जे पाड़नि में ॾाढो सूर आहे तमामु अरसो इलाही थी वियो आहे
0: अच्छा इनखे केतिरो टाइम थी वियो तक़रीबन
3: तक़रीबन साल थी वेंदो पर दवाऊं ॾाढियूं वठियूं आहिनि
0: अच्छा पोइ एतिरो टाइम थी वियो आहे डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञो आहे त हिन महिल ताईं तव्हां अलहमदिल्ला बिल्कुलु सही हुजो आहे हा ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो रेडियो ॿुधो जी सर हुन सर तक़रीबन साल लोड़ियो आहे पंहिंजे सूर दर्द में ॿिए हंधि बि ॾेखारियो आहे लेकिन ज़ाहिर आहे
2: हाणे बिल्कुलु
0: फाइनली जीअं चवंदो सर आख़िर में
2: हिकिड़ो टाइम थींदो आहे को वेझिड़ाई खां थींदो आहे त उनजो को ॾसपंदो ॾेई सघिबो आहे हिकिड़ो पुराणो मर्ज़ु आहे त उन में हींअर ट्रीटमेंट यानी इलाज ई ज़रूरी आहे सो मां भाउ खे इहो मशवरो ॾींदुसि त रूबरू ॾेखारे वञनि ऐं ट्रीटमेंट उनजो इलाजु कराइनि त उहो वधीक बहितरु आहे जी सर
0: प्रोग्राम में आख़िरी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी प्यारा भाउ कह रहे हैं किथां खां माशाल्लाह तमामु सर असांजो लिसनर आहे ॿुधंदड़ असांजे GFM 94 जो जी असां छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां ऐं असांजे प्रोग्राम जे बारे में ज़रूरु फीडबैक ॾींदा
4: पहिरियां त आउं अव्हांखे मुबारकबाद ॾींदुसि तव्हांखे ऐं डॉक्टर साहिब खे बि तव्हां माशाल्लाह बहितरीन प्रोग्राम कयो पिया ऐं डॉक्टर साहिबु बहितरीन मशवरा ॾिए पियो ऐं डॉक्टर साहिब खे मां हिकिड़ो फीडबैक ॾींदुमि त मां कुझु ॾींहं पहिरियां पंहिंजे माना सुबुह सवेर जे उथण जे बारे में मां हिकिड़ो इतला ॾिनो त उथंदो आहियां त मूंखे थोरी कमज़ोरी ऐं फेरिंग ईंदी आहे ऐं उनखां बाद जॾहिं मां ॿ टे चकर ॾींदा मां सही थींदो आहियां डॉक्टर साहिब जेके मूंखे टिप्स ॿुधाया ऐं मूं उन्हनि ते अमल कयो उहे मां जेको टिप्स हिकिड़ो बादाम मिसरी ऐं साईं वॾा वॾा सिया उहे मां घोटे पची हाणे बिल्कुलु ऐं मूंखे इलाही फ़ाइदो आहे ऐं मां तंदुरुस्तु आहियां
0: माशाल्लाह माशाल्लाह तमामु बहितरीन ऐं ऐं अव्हां जेको फीडबैक ॾिनो आहे इहे अव्हां सॼणनि जो दोस्तनि जो महिरबानी आहिनि जेके असांखे प्यार मोहबत
4: ऐं इहो इहो ई जेको आहे साईं जो ॾस मां ॿिनि खे बि ॾसियो आहे जेके सुबुह सवर सां पंहिंजो पाण खे थोरो
0: बिल्कुलु माशाल्लाह सर ज़बरदस्त जी
4: हा
0: थैंक यू सो मच इहा अव्हां सॼणनि जी महिरबानी आहे अव्हां सॼणनि जो प्यारु आहे जेको असांखे माना ॿुधायो था हिकु रिज़ल्ट ॾियो था व्यू ॾियो था
4: जेको डॉक्टर साहिबु ऐं आहिनि माशाल्लाह नौजवान प्यारा आहियो डॉक्टर साहिबु प्यारो आहे ऐं माशाल्लाह अलाह साईं डॉक्टर शाह जे हथ में शिफ़ा था फरमाई ऐं डॉक्टर साहिब जे हथ में शिफ़ा आहे
0: जी सर माशाल्लाह त तमामु घणी महिरबानी भाउ जी हुन फीडबैक बि ॾिनो ऐं कंहिंजी साल सियाल खां पियो ॻाल्हाए सर
2: ज़बरदस्त ऐं दोस्त जी जेको आहे सो वॾी वॾी महिरबानी इनकरेज करण जी ऐं इन ॻाल्हि ते वरी हिकु दफ़ो ॿीहर असां रब ताला जो शुक्र अदा कयूं था। इन में असांजी मुंहिंजी का बि कमालियत कान्हे का, इन में अलाह ताला जा जेको आहे सो अहसान आहिनि। अलाह ताला हिकिड़ी शिफ़ा रखी आहे, जीअं दोस्त ॻाल्हि कई असांजे शिफ़ में हथ में शिफ़ा आहे, त इहा अलाह ताला जा अहसान आहिनि। ऐं इहे जेको आहे सो इन्हनि जेके क़ुदिरती शयूं आहिनि उन्हनि में ॾिसो असां बार बार बार बार इहे सिर्फ़ु चवंदा आहियूं त भई ही क़ुदिरती शयूं आज़मायो, छो जो असांजो दवाऊं बि इन्हनि ई शयुनि मां ठहियल आहिनि। ॾिसो हिननि जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, ऐं हीअ क़ुदिरती शयूं आहिनि, हिननि जो को साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, ऐं हिकिड़ी बहितरीन जेको ग़िज़ा बि आहे, दवा बि आहे। बादाम सां वधीक बहितरु आहे। अवां सभिनी जे साथ जो, प्यार जो, मुहबत जो, ख़ुलूस जो थोरायतो आहियां। वॾी महिरबानी अवां।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु हुआ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। वक़्तु गुज़रंदे देरि न लॻंदी ऐं असांजो अॼोको प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। दुआ आहे त अलाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं ख़ुशि रखे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे। अलाह हाफ़िज़। अलाह वाही।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: अदम बर्दाश्त, नफरत, गाली गलौज का कल्चर जो है उसे सियासत में दाखिल किया जाए. ये किसी सूरत भी ना कानून, ना आईन, ना सियासी अखलाकियात इस बात की इजाजत नहीं देती.
6: रियासत के यरगमाल बनाए को भी मुतालबो नथो मंजराए सजे. जाती एजेंडा के कौमी मफाद ते तरजीह न ॾिनी वञे. हुकूमत गालन जा दर बंद नाहन कया. पीटीआई जाती मफादन के पासे करे मसलन जे हल लाए अगते वधे. वजीर आजम जी सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी कोशिश करे रही आहे. लॉन्ग मार्च लाए केपीए जा सब वसीला इस्तेमाल कया पिया वञनि. अफगानिस्तान मां दहशतगर्दी थी आहे. अफगान पॉलिसीअ ते पीटीआई खां सवाइ समूरी क़ौम मुतफ़िक़ आहे. पीटीआई चेयरमैन हुकूमत खां गैर मशरूत ॻाल्हियूं करण जो मुतालबो करे छॾियो. बैरिस्टर गोहर चयो आहे त जेतिरो वक़्तु प्रेस कॉन्फ्रेंस ते लॻायो पियो वञे, एतिरो वक़्तु ॻाल्हियूं कयूं वञनि हा त मसलो हल थी वञे हा. इस्लामाबाद असांजो आहे. लॉन्ग मार्च ज़रूरु इस्लामाबाद ईंदो. ॻाल्हियूं ॿीहर थियणु घुरिजनि, ब्रेक न लॻणु घुरिजे. अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचरज़ई चयो आहे त पीटीआई बानी सां मुलाक़ात करण बिना ॻाल्हियूं न थींदियूं. हुकूमत मसइले जो हल चाहे थी त बानीअ सां मुलाक़ात कराए. खैबर पख्तूनख्वा में वधंदड़ दहशतगर्दीअ खे हर क़ीमत ते रोकणो पवंदो. के पी जे अवाम जूं दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ क़ुर्बानीूं साराह जोगियूं आहिनि. ख़्वाहिश आहे त के पी ॿिए मुल्क जे ॿियनि सूबनि जीअं तरक़ी करे. वज़ीर आज़म जूं वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं. वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी. वज़ीर आज़म जी कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाईअ वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत. पीपल्स पार्टी सदाई ज़ाती मफ़ाद खे क़ौमी मफ़ाद ते तरजीह ॾिनी आहे. के पी जे गवर्नर जो अमन अमान बाबति इजलास करणु बि गैर आइनी आहे. के पी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी काबीना खे ख़िताबु कंदे चयो त पीपल्स पार्टी माज़ी में बि ग़लति किरदारु अदा कंदी रही आहे. गवर्नर पारां इजलास जी सदारत करणु आइन ऐं जमहूरियत ते हमिलो आहे. के पी पुलिस खे पंजाब पुलिस बणाइण जी कोशिशि न कई वञे. के पी हुकूमत सूबे में अमन अमान लाइ संजीदा आहे. वफ़ाक़ पंहिंजी होड़ ख़तमु करे.
7: वो अटेम्प्ट करेंगे तो वफाकी हुकूमत जो है तो वो अपनी तमाम जो है लवाजमात और अपने जो मीन्स हैं धीरे कार लाएगी. मुझे लगता है जहाँ आपका क्या मतलब समझें कि उसमें कोई रुकावट हो सकती है. कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिरी ऑप्शन पर नाम जाए, लेकिन अगर कोई रास्ता ऐसा ना बचा तो फिर ऑप्शन जो है दारकूमत को हम उनके रहने कर्म पर तो नहीं छोड़ सकते. हर दो तीन माह के बाद ये लश्कर किसी करें तालिबान के साथ मिलकर दारकूमत को पीटीआई जो है एक सियासी पार्टी का रोल अदा करे, एक दहशतगर्द पार्टी का रोल.
6: हुकूमत के पी में गवर्नर राज समेत समूरन आइनी ऑप्शन से गौर कर रही है. गवर्नर राज लागू करना आखिरी ऑप्शन होंद. बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो है तो पीटीआई वारा हर टिन महीनों बाद इस्लामाबाद ते काह कंदा आहिन. पीटीआई जी सूबाई हुकूमत जो दहशतगर्दन से गठजोड़ वाली शाहिदियों मौजूद आन. वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चयो है तो लॉन्ग मार्च के कें भी सूरत में इस्लामाबाद में दाखिल थे नो वो. सोहेल आफरीदी रवियो तब्दील न कर तो हालत उनको जिम्मेवार पा हों. क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज सादिक जी मौलाना फज़ल रहमान सां मुलाक़ात. अयाज सादिक जे यू ए सरबराह खे अपोज़िशन सां थियल ॻाल्हियुनि बाबति आगाह कयो. सरदार अयाज सादिक जे यू ए सरबराह सां मुलाक़ात लाइ संदसि रहाइश खां पहुतो हो. उमिरि जी सआदत ते मुबारकूं ॾिनियूं. वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि रेलवेज़ में सुधारनि बाबति इजलास. शहबाज शरीफ़ जी ML-1 ते कमु तेज़ करणु, रेलवेज़ में कारपोरेट तर्ज़ जा सुधारा आणण जी हिदायत. ML-1 जी तामीर लाइ कमर्शियल मनसूबनि ज़रिए बैंक्स खां फंडिंग वठण जी मंज़ूरी ॾिनी वई. शहबाज शरीफ चयो त रेलवे जी कमर्शियल ज़मीन खे इस्तेमाल करे रेलवे खे बहितर बणाए सघिजे थो। इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त एम एल वन खे चार हिसनि में विरिहायो वियो आहे। आलमी फंडिंग सां गॾु मक़ामी फंडिंग ते बि कमु जारी आहे। कणक जी दस्तियाबी ऐं अटे जे अघनि बाबति वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि आला सतही इजलास। वाधो कणक मार्केट में फराहम करे अटे जी क़ीमतुनि में इस्तेहकाम आणण जो फ़ैसिलो। 15 अक्टूबर खां सरकारी कणक जारी करण जी बि मंज़ूरी। मुराद अली शाह चयो त 100 किलोग्राम कणक जी ॿोरी 12,500 रुपियनि जे हिसाब सां।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-57-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85-69।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए FM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
0: आप सुन रहे थे GAFM

हूसी मलेशिया जो सऊदी शहरन ते नओ हमलो नाकाम। सऊदी इताद फौज मिसाइल फिजा में तबाह करे छड्या। सऊदी इताद फौज जो चवण आए त हूसी मलेशिया सऊदी शहर खमेस मस्जिद के निशान बणाया जिनके फिजा में तबाह करे छड्यो। सऊदी के यमन में हूसी मलेशिया जे कंट्रोल हेठ शहरन सना सदा ए इमरान गवर्नर मां हमलन जो खतरो आए। इतादी फौजन जो यमन ते हमलन जो सिलसिलो जारी आए। सना सदा ऐं हुदया में हूसी बागन ते बम्बारी। हथियारनि जो डीपू सामूंडी सिरगू ऐं बैलिस्टिक मिसाइल लांचर्स तबाह करण जी दावा। परडे॒ही ख़ाबरू इदारे मूजिब तहज में इतिहादी फ़ौज जे हमले में 250 विढ़ाक मारिजी विया ऐं 20 ज़ख़्मी थिया आहिनि। ईरान जंग ते हर महीने 3 अरब डॉलर खर्च थी रहा आहिनि। सदारती चूंडुनि में हिसो वठण बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे कयो। तेल जूं क़ीमतूं मिड-टर्म चूंडुनि खां अॻु दॿाउ जो सबबु बणिजी रहियूं आहिनि। जंग ख़तमु करण लाइ ईरान खे यूरेनियम जो रिचार्ज घटाइणो पवंदो। ईरान एटमी हथियार नथो चाहे त खेसि 100% यूरेनियम पाण जी ज़रूरत छो आहे। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस जी ईरान सां ॻाल्हियुनि जारी रखण जी तस्दीक परडे॒ही ख़ाबरू इदारे राइट्स खे इंटरव्यू ॾींदे जे डी वेंस चयो आहे त ईरान जूं एटमी प्रोग्राम्स महदूद करण वारियूं सखणियूं ख़ातिरियूं काफ़ी न आहिनि। अमरीकी ईरान खां अमली क़दम चाहे थो। अमरीका मुआदे लाइ तयारु आहे पर ख़बर नाहे ईरान में हतमी फ़ैसिला केरु करे रहियो आहे।

सिफारती सतह ते पाकिस्तान जे अहम कामयाबी, भारती कोशिशूं नाकाम। जनीवा में गडियल कौमनि जे इंसानी हक़नि जे काउंसिल में पीअण जे साफ़ पाणी ऐं सफ़ाई सुसराई बाबति ठहराउ मंज़ूर। पाकिस्तान जे सिफारती कोशिशुनि सबबि पहिरियों भेरो ठहराउ में पाणीअ जी सरहद पार सहकार जो वाज़े हवालो शामिल। जर्मनी ऐं स्पेन पारां पेश ठहराउ इंसानी हक़नि वारे काउंसिल जे 47 मेंबरनि मुल्कनि ठहराउ इतफ़ाक़ राय सां मंज़ूर करे वरितो। पाकिस्तान तरफ़ां फर्स्ट सेक्रेटरी अदील खोखर ख़िताबु कंदे चयो त जिते पाणी गडि॒यल हुजे उते ज़िमेवारियूं बि गडि॒यल हूंदियूं आहिनि। गडि॒यल पाणीअ ते सहकार पाड़ेसरी मुल्कनि जे विच में एहसान या रियायत न, पर गडि॒यल ज़िमेवारी आहे मथां वहकिरे वारे दरियाउनि जे मुल्क खे पाणी सियासी दबाउ जे हथियार तौरु इस्तेमालु करण जो हक़ु नाहे। पाणीअ खे गडि॒यल ज़िमेवारीअ जे उसूलनि तहत इस्तेमालु कयो वञे।

0: खुशकिस्मति से ये धर्मों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं वो दोबारा नमोदार हो रहे हैं। नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूरत नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा इंशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूँगा कि आप अपनी होश के नाखून दूँ, क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगी या फायदा पहुँचाएगी। ये पूरी कौम इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप होश के नाखून लें, इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धर्मों को आप इसको खत्म करें, और खत्म करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई के गाल मशरूत आश लॉन्ग मार्च ए धरणो खत्म करण जो शर्त रखी छो। इस्लामाबाद में तकरीब खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहिए धरणे ए लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पैरों निशानो मईशत हूंदी है। हुकूमत नेक नेतिया से पीटीआई से गाल शाह मुआशी फीते के बीहर रोकण मुल्क दुश्मनी ना। पीटीआई वारा होश का कम वठन लॉन्ग मार्च खत्म कन तो बीहर गाल सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। पीटीआई के लॉन्ग मार्च सबब पैदा थियल सूरत हाल समेत मुल्क के मजमुई सियासी ए सिक्योरिटी सूरत हाल से गाल कें भी आइनी ए कानूनी कदम का पैरियां मुशावरत जो अमल जारी रखने इतफाक
2: शर्त है। उनकी जहां चाबी है वह बानी पीटीआई वट है, पैरियां मुलाकात थी ही मामला अग्न वा तो उन हवाले से नाजिम गुफ्तगु कदे जो पैनल मुसा गुड मौजूद है तारो पासा कराइंदस। अजो के प्रोग्राम में गुफ्तगु के लिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सीनियर अगवाण हैं एमएनए अगुणो एमएनए लाल माली साहब मुसा गुड मौजूद है। उनका सवाल नाजिम मियाँ अजीम साहब मुस्लिम लीग नून जहा सीनियर अगवाण हैं, वीडियो लिंक जरिए इन प्रोग्राम जो हिस्सो हैं। आई नवाब तैमूर टालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहा सीनियर अगवाण कुछ देर में मुख्य ज्वाइन कंदा इन प्रोग्राम में। अवां बिन्हीं के भलीकार बिन्हीं की मेहरबानी अवां गुफ्तगु के लिए वक्त कढ़ो। लाल साहब अवां का गुफ्तगु जो आगाज क्या थी चवंदो अवां कि आछ आयल है उन जवाब में एक शर्त के जवाब में पीटीआई भी पैंजो शर्त रखी छो है पर जो इन वक्त डेडलॉक मौजूद है इन डेडलॉक वाली सूरत हाल के खत्म करने के लिए बिन्हीं धुरन में कें एक के फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पवंदी किए दिसो पे समूरी सूरत हाल के हुकूम जो गाल करे पई तो एकड़ो स्टेप पीटीआई अग्न खणे तो उनका पोए मामला आसान थी सगन था।
3: केतराई कदम अग्न वधी इन हुकूमत के गालिन लाए चवंदी रही।
4: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर KTN News
5: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
7: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
8: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
9: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
10: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
11: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
10: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
11: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
12: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम, 03014531456 ऐं तौकीर अहमद, 03601623793।
13: अस्सलाम वालेकुम अदा।
14: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
13: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
14: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
13: न अदा।
10: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
13: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
14: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
13: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
10: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
14: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी,
15: 03013992836।
16: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: वो अटेंड करेंगे तो काफी हुकूमत जो है तो वो अपनी तमाम जो है लवाजमात और अपने जो मीन्स हैं वो कार लाएगी। मुझे लगता है जहाँ आपका क्या मसला समझें कि उसमें कोई रुकावट हो सकती है, कोशिश हम कर रहे हैं जो आखिरी ऑप्शन पर नाम जाएं, लेकिन अगर कोई रास्ता ऐसा ना बचा तो फिर ऑप्शन जो है दारुल हुकूमत को हम इनके रोनो कर्म को तो नहीं छोड़ सकते कि हर देश में ना के बाद ये लश्कर कोशिश करें तालिबान के साथ मिलकर दारुल हुकूमत को पीटीआई जो है एक सियासी पार्टी का रोल अदा करे तो दहशतगर्द पार्टी का रोल अदा करे।
1: सूबे के यरगमाल नथो बनाए सकजे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज समेत समूरन आइनी ऑप्शंस ते गौर कर रही है। बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चेवा है तो पीटीआई वारा हर टिन महीनन बाद इस्लामाबाद ते काह कंदा आहिन। पीटीआई जी सूबाई हुकूमत जो दहशतगर्दन सा गठ जोड़ वारी शायदी मौजूद आहिन। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चौथ लॉन्ग मार्च के कहीं भी सूरत में इस्लामाबाद में दाखिल थे न दिनो वेंदो। सोहेल आफरीदी रवियो तब्दील न कयो तो हालतुन जो जिम्मेवार पान होंदो।
2: JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती वफद की मुलाकात। स्पीकर सरदार रियाज सादिक राणा सनाउल्ला और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। हुकूमती वफद मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन से थियल गालियन बाबत आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान जो हुकूमत के केपी में गवर्नर राज या एमरजेंसी न लगाने जो मशवरो। सरदार रियाज सादिक उम्मीद ते दुनिया कायम है, साथियों से रबता जारी है, इंशाल्लाह जरूर रस्तो निकरंदो।

0: फील्ड मार्शल सां गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल जी मुलाक़ात, गॾियल दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरतहाल, आलमी अमुन ऐं सलामती वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। वालरल कश्मीर तकरार, भारत पारां सिंतास मुआदे खे इल्तवा में रखणु, अफ़गानिस्तान मां थींदड़ दहशतगर्दीअ वारनि मामलनि ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। एस पी आर मौजे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी अमुन लाइ पाकिस्तान जो अज़म वरजाईंदे गॾियल क़ौमनि जे अमुन मिशन्स में पाकिस्तान जे किरदार ऐं क़ुर्बानीनि खे उजागर कयो। एंटोनियो गोतरेस दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग ऐं अमुन मिशन्स में पाकिस्तान जे क़ुर्बानीनि खे भेटा पेश कई।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एटमाट ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212020।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐ सचाई, लबन ते मुर्का विखरिल दिलिन में आ बे आई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल

GFM नेटवर्क ऐं दिलि जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि महबूब शख़्सियतनि दिलरुबा दोस्तनि पिरी प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।

जी दोस्तों, तो आइए मिलके सुनते हैं गुलाम अली खान साहब की खूबसूरत प्यार भरी आवाज में ये प्यारा सा गीत, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा।

जी दोस्तों, प्रोग्राम दिल जी गल सा कर रहा है अब चौहान ए आवा बुधी रहे हो जीए एफएम नेटवर्क। दोस्तों आफ्टर ब्रेक असा आवा जो कॉल्स भी खणदा से आवा सा कचेरी भी कंदा से खोड़ सारी दिल जी गालियों कंदा से हियर वक्त थी रहो है एकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खा वनन खा अग में जिन दोस्तन असा के न्यूली ट्यून कियो है उनन के पंजो लाइव कॉलिंग नंबर बुधाई दोला आफ्टर ब्रेक असा कॉल अटेंड कंदा से 03000113488 तपोए मिलूं था वापस एकड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का पोए ब्रेक का पो तपोए बुधन न विसारींदा दिल जी गाल अब चौहान सागर जी एफ एम नेटवर्क।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज ठरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: प्रोग्राम जेकॾहिं को दोस्त कंहिंखे रिकॉर्डिंग करे पहुचाए थो त उन वसीले बि हू दोस्त असां सां गॾु शामिल थी सघनि था। जी दोस्तो, बिना कंहिं ताख़ीर जे वक़्तु आहे अवां सां कचहरी करण जो, दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधण जो, त पोइ लाइन ते कॉलर मौजूदु आहे, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम, केरु साईं, किथां खां? हैलो, हैलो, हैलो, हैलो, जी केर किथां खां? आवाज़ अव्हां जो कुझु डबलिंग में कटिजे पियो। निसार अहमद किथां? जी अदा अलाए किथां पिया अचो? हलो, निसार साहब किथां पिया ॻाल्हायो? हा, कॉल ड्रॉप थी वई, इंतिहाई दुख थियो, शायदि मुंहिंजी मिस्टेक त मां उन्हनि जी आवाज़ न सम्झी सघियुमि या उहा बि कोन सम्झी सघियो। सो कॉलर शामिल कंदासीं असां ॿियो नेक्स्ट प्रोग्राम में, मतिलबु नेक्स्ट प्रोग्राम में न, नेक्स्ट कॉलर शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। السلام علیکم، خیر سائیں، کتھا کھا؟
1: وعلیکم السلام، خوش آئیں، طبیعت خیریت؟

0: जी दोस्तों, एक कॉल शामिल कंदासीं ऐं आफ्टर ब्रेक साईं जन जी फरमाइश ते असां गीत बि प्ले कंदासीं, छाकाणि त 9:45 ते असां ब्रेक ॾियां वेंदा आहियूं। हिकिड़ी शॉर्ट कॉल शामिल करण जी कोशिशि कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, खैर साईं, किथां खां?
1: साईं मुंहिंजा भाउ, वालेकुम सलाम, फ़क़ीर रजब अली जुमे जो नज़र एयरपोर्ट सां।
0: रजब साईं, अव्हां जो अंदाज़ ऐं मिज़ाज ई निरालो आहे, पर मां ख़ुशीअ सां गॾो गॾु जेको आहे त थोरो परेशान बि थियमि त शॉर्ट कॉल जो मूं अॻ में ई अर्ज़ु रखियो त 9:45 ते ब्रेक ॾांहुं वेंदा आहियूं। बहरहाल ॾाढी ख़ुशनसीबी अव्हां जी कॉल कनेक्ट थी। छा चवणु चाहींदो? ॻाल्हायो ॻाल्हायो तव्हां।
1: मोहबत सीरत सां कर, कंहिंजी सूरत तलाश न कर। हर हिक सां वफ़ा कर, वफ़ा जी तलाश न कर।
0: वाह वाह।
1: भरोसो रखे।
0: बिल्कुल साईं, बिल्कुल।
1: उन शख़्स जी खे कॾहिं बि न भुलायो जेको तव्हां खे ॾींहुं राति यादि करे थो।
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु।
1: बाबा साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं आबाद खे ख़ुशि हुजो।
0: सलाम थी।
1: आख़िर में हिकिड़ो जेको आहे करणा डूंगर खणी वाटर ते वारी
0: मोहबतुनि माण्हुनि जो असल में वरी प्रोग्राम जो टाइमिंग बि तब्दील थी वई आहे।
1: जी जी,
0: मतलब टाइम साॻियो आहे, लेकिन जेको
1: आहे
0: जी ॿुधाए छॾियो। कंहिंजो आहे इहो गीत?
1: इहो साईं सोना खान बलोच।
0: सोना खान बलोच।
1: जी जी।
0: अदियूं मुंहिंजो
1: अदियूं त पुनल जो ॾस।
0: आवाज़ अव्हां जो कटियो थोरो, ॿीहर ॿुधाइजो। अदियूं
1: अदियूं मूंखे ॾियो त पुनल जो ॾस।
0: मूंखे ॾियो त पुनल जो ॾस। हा
1: जी जी,
0: बसि ठीकु आहे सर। इहो लास्ट में प्रोग्राम ॿुधाए रहियो, आख़िर में प्रोग्राम जे प्ले कंदा।
1: जेके दोस्त तव्हांजे प्रोग्राम मूंखे सलाम ॾियनि था, मूंखे नाला त यादि न आहे।

0: उन्हनि जी वॾी महिरबानी थियण सां उन्हनि जो थोरो ऐं उन्हनि जा इंसान जो पतीअ खे यादि रखंदा, सलाम ॾियनि था, मौला उन्हनि सभिनी खे ख़ुशियूं अता करे, तव्हांखे सभु साईं विक विक ते
1: जी दोस्तो अवां जी कॉल बि बहुत तमामु बेहद इम्पोर्टेंट हुई, सो असां थोरो मिस कयोसीं कुझु ब्रेक्स खे, सो हींअर हिकिड़ी गीत जी फरमाइश आहे, इंतिहाई शदीद फरमाइश आहे, मुसलसिल थींदी रहे थी, सो अव्हां जे हुकुम जी तामील कंदे ट्रैक प्ले कयूं था, अव्हां जा आशिक़ हज़ार आहिनि, मुंहिंजी फ़क़ीर जी ख़ूबसूरत आवाज़ में।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गल से गदा हूं है आबिद चौहान है मैं बुधी रहा हूं जी एफएम नेटवर्क जी दोस्तों कोशिश कंदा से एक अद कॉल शामिल क्यों उन खापो असा डेफिनेटली न्यूज़ ब्रेक ना लाजमन वेंदा से असा वहां जे कॉल जे करे थोरो रहजी आसे एनीवेज बई शयूं लाज़मन आहिनि अवां बि ऐं असांजे प्रोग्राम जो पैटर्न बि त पोइ कॉल शामिल कयूं था अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां साईं मुंहिंजा वेलकम भलीकार ख़ुशि आमदीद पहिरां कहिड़ा हालनि ख़ुशि आहियो
1: दुआऊं
0: सर अलाह जा अहसान
1: अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो आबाद हूंदो दिलि जी ॻाल्हियूं इहे आहिनि त बाबा तालीम हासिल कयो
0: बिल्कुलु
1: सुठे कंहिंजे हिन में ज्ञान में अचो
0: बिल्कुलु
1: तालीम जेका आहे इंसान जो वॾो हिकिड़ो सुधारो बि आहे ऐं सुहं बि आहे
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बेशक
1: बाबा बाक़ी असांखे पोइ पछाड़ीअ में को माई भाॻीअ जो को ॿुधायो
0: पछाड़ीअ में रजब वग़ैरह जी बि फरमाइश उहा बोल सर्च कया आहिनि कोशिश कयां पियो शल उहा पूरी थिए माई भाॻी बि शामिल कयूं था पोइ हिकु पछाड़ी में शामिल
1: थींदी
0: वॾी महिरबानी
1: महिरबानी

0: न्यूज़ ब्रेक ते वञणु खां अॻु में हिकु कॉल असां ॿी अटेंड कंदासीं, पर उमेद त उहा शॉर्ट कॉल हूंदी। जेको बि दोस्त आहे जंहिंजो नंबर ख़ुशि नसीब जो रिसीव थी रहियो आहे, त काइंडली उहा शॉर्ट ई हुजे कॉल। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? वालेकुम सलाम। छा चवणु चाहींदो? बिल्कुल साईं,
1: दुनिया में क्या हो जाए तो हमारे अबे जेडी खेल
0: बेशक साईं, बेशक
1: दोस्तन दा नाव
0: नाव शामिल कियो, नाव शामिल कियो
1: पण जो ना तो आगे ने की सिकंदर ख्याल आप जो
0: जी अदा
1: मुझे प्यार आशु को सन ख्याल खैर तो
0: जी
1: पण जो चाचो निजाम आरी दो
0: जी
1: एक जो हाल से अब आरकाणो
0: जी
1: आओ शेर कंबाद
0: जी
1: वो आप चुनान गए टाइम के
0: लख थोड़ा सही बड़ी मेहरबानी
1: अल्लाह से दा थैंक यू करे तेरा सा एक सॉन्ग आप के प्यार सफाई गुजरा ता बड़ी मेहरबानी की दी
0: जी बधाई छड़ियो
1: ममता लाशरी का याद कर जी जल जी
0: जी कोशिश करदा से ममता लाशरी जो सा गीत लाजमी शामिल
1: फर्स्ट टाइम कॉल लगी है तकरीबन जी तो
0: थैंक यू सर, कुर्बल लख लाइक ओके अल्लाह हाफिज। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इल्म अदब आर्ट ऐं सूफ़ीज़म सकाफ़त कल्चर इन्हनि सभिनीनि शयुनि खे जेकॾहिं असांखे ज़िंदा रखिणो आहे त तालीम ॾांहुं असांखे अॻभरो थियणो पवंदो ऐं जदीद साइंस टेक्नोलॉजी जे दौर में पेर पाइणो पवंदो। वक़्तु थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ शॉर्ट कमर्शल ब्रेक्स आहिनि कुझु, ऐं शॉर्ट कमर्शल ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वापसि वरी वरंदासीं। ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 10 p.m.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: brought to you by
5: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
6: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: कंडा जो है वो नहीं बनने दिया जाएगा। पीटीआई की जब से शनाख्त मिली तो उसके बाद से उनका एक ही जो है वो एजेंडा और मकसद रहा है, सियासी रवादारी को खत्म करके अदम बर्दाश्त, नफरत, गाली गलोच का कल्चर जो है उसे सियासत में दाखिल किया जाए। ये किसी सूरत भी ना कानून, ना आईन, ना सियासी अखलाकियात इस बात की इजाजत नहीं देती।
8: रियासत के यरगमाल बनाए को भी मुतालबो नथो मंजना सकजे, जाती एजेंडा के कौमी मफाद ते तरजीह न डिनी वे। हुकूमत गालन जा दर बंद नाहन कया, पीटीआई जाती मफादन के पासे करे मसलन जे हल लाए अगते वधे। वजीर आजम जी सलाहकार राणा सनाउला चयो है त पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी कोशिश करे रही है। लॉन्ग मार्च लाए केपीए जा सब वसीला इस्तेमाल कया पे वन। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी थी है, अफगान पॉलिसी ते पीटीआई का सवाए समूरी कौम मुतफिक है।
9: पीटीआई चेयरमैन हुकूमत का गैर मशहूद गालियों करने का मुतालबो कर छो। बैरिस्टर गौर चवाया था जो वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगाया पे वे एतो वक्त गाल वन हाँ तो मसलो हल थी वे। हाँ इस्लामाबाद असो है, लॉन्ग मार्च जरूर इस्लामाबाद थी, गाल बीहर थियन घुर्जन, ब्रेक न लगन घुर्जे। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई तो पीटीआई बानी से मुलाकात कर बिना गाल हुकूमत मसले जो हल चाहे थी तो बानी से मुलाकात कराए।